0: ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ହୁଅ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାଲି ଓ ଚିନିର ମିଶ୍ରଣ ପାଇବା ବେଳେ ତାହା କେବଳ ଚିନିକୁ ବାଛେ, ବାଲିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ କେବଳ ଭଲ ଦେଖ, ଖରାପ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ। ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦୁଝର, ସମୟ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ପରେ ପରେ ଶୁଣିପାରିବେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य

0: सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मांग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମ୍ବାଦରେ ଲେଖରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम प्रवाचिका ऋचा झा। प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुल गांधिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा अन्ये दल सदस्या नीट विषयक चर्चामाधृत्य प्रदर्शनम अकुर्वन्। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह तथा केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ। तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्य एव जाते नीट परीक्षाया प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान विरुद्ध्य दृढ़ निग्रह कर्तुम अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षणं च पुनः उद्घाटितवान्। असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति। प्रधानमंत्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नामना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्। वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमंत्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां संबंधित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकतां विशेषतया प्रतिपादितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा भारत उत्तर मेसिडोनिया देशयोः आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती। उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम् आग्रहम् अकरोत्। स्कोप्जे इत्यत्र भारत उत्तर मेसिडोनिया व्यापार मंचं संबोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मेसिडोनिया देशस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति या उभय देशयोः संबंध सुदृढीकरणे भारतस्य दृढ प्रतिबद्धताम् द्योतयति। सा अवोचत् यत् वर्तमान व्यापारस्य परिमाणं तस्याः संभावनायाः अंशमात्रमेव प्रतिनिधित्वं करोति। अस्य दशकस्य अन्तपर्यन्तं द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणं भवितुं शक्यते इति विश्वासः अस्ति। भाजपेति दलं ह्यः लोकसभायाः विपक्षनेतुः राहुल गांधिनः लोककल्याण मार्गे विरोध प्रदर्शनस्य निन्दाम करोत्। तेन प्रदर्शिताचरणं पूर्णतया अशोभनीयं निन्दनीयं चेति वर्णितवान्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् भाजपेति दलस्य अध्यक्षः नितिन नवीनः उक्तवान् यत् एषा घटना दुर्भाग्यपूर्णा अस्ति, भारतस्य राजनैतिक इतिहासे कृष्ण दिवसेति वर्णितवान्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य द्विदिवसीय फिलीपींस देशस्य यात्रायै मनीला इत्यत्र गमिष्यति। तत्र असौ आसियान इत्येतस्य अन्तर्गतम् आयोजितेषु विदेशमंत्री स्तरीयोपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति। इति वार्ताः।
0: आपण माने कार्यक्रम सुनुचंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु सुनंतु आज प्रचारित हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्क रे सूचना आमर स्वास्थ्य सकल 7:10 रे विषय रहिचे बेहेडा दंतर उपचार आलोचक डाक्टर अभिलाष महापात्र प्रभात परिक्रमा सकल 7:25 रे कथिका सकल 7:35 रे विषय रहिचे बौद्ध तंत्र रो दारु देवता आलोचिका डॉक्टर भाग्यलिपि मल्ला रागमंजरी सकल 7:40 कंठशिल्पी सोमेश श्री रथ संगीत शांतनु महापात्र सकल 8:30 श्रीक्षेत्र माधुरी रे विषय रहिचे मुदिरस्थ सेवा आलोचक सुखदेव महंती
3: आकाशवाणी केन्दुझर समय सकाळ 7:00 शुणंतु कार्यक्रमरे सूचना।

0: ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆଦିବାସୀ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ହରମୋହନ ସୋରେନ ଏବଂ ସାଥୀ କଳାକାର।
1: हे प्रभु ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी।
2: अरे राजू भाई पीएम सूर्यघर योजनार यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे मु तो मो घरे सोलार लगे देलिनी बिजली बिल टेंशन रो मो पूरा मुक्ति।
1: सतरे भाई?
2: हाँ भाई मात्र 1875 टंका रे पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
3: आज्ञा हाँ आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु।

0: ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦୁଝର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
5: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
7: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
8: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBO 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहिक श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
9: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
10: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों के

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है,
4: पर मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा

0: की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोक सत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीयों को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar.

0: लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जाइथिली एबे तो सोलर पैनल लागि जाइछि ना ताहेले जो 4000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in
2: हर घर सूर्य घर
3: जे जे इटा को प्लांट
4: टेंजरीन बहुत मीठा भांगीवनी हैला फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक एबे करूछ
3: जे जे रुहो लिंक रे क्लिक करो नहीं
4: काहे की
3: एटा एसएमएस स्कैम क्लिक करबो तो तुम्हारो बैंक डिटेल्स हेबो चोरी
4: ओह थैंक्स कपू बंचेई देलु एई ने तोर बुद्धिमत्ता रो फल
5: आरबीआई कहे स्मार्ट बनो कूल रुहो
6: श्रोता बंधु नमस्कार नमस्कार केन्दुझर अगणा को आपणक स्वागत आज आरंभ ए सुंदर कहानी रु दिने गोटे गरीब छोट पिला दिन द्विप्रहर प्रचंड खरारे खाली पदरे फूल बिक्री करूला लोक मैंने ताठू फूल किणुले किंतु दरदाम मूलचाल करूले से जे सज्जन नजर तार ततलें ठिया होता खाली पद पड़ा हृदय दयारे भरीगला से संगे संगे पाखे दोकान को जा एक जोड़ा जोता किणी आणिले हसी कहिले पुआ ने ए जोता पिंधे ने पिलाटी खुशी जोता पिंधिला तार आखिरे खुशीर लहरी खेलीगला छोट पिलाटी से ही सज्जन हाथ धरी पचारा आपण भगवान कि सज्जन हसी कहिले नाई पुआ मु भगवान नुहे साधारण मनीषटे पिलाटी पुणी कहिला ताहले आपण निश्चय भगवान का सांग होइथिबे सज्जन आश्चर्य होई पचारे एमती कहीं कहछु पिलाटी कहला कारण गत काली राति मु भगवान को प्रार्थना करी आई प्रभु मोर पाद बहुत पड़ुछी मत एक जोड़ा जोता दे दियो आज आपण से ही जोता नहीं आसीगले सज्जन आखि लुहरे भरीगला तथा से अल्प टिके हसी आग को चलीगले किंतु मनरे गोटे कथा सबुदिन बसा बांधिगला भगवान बंध होगा एत कष्ट नुहे अन्यर हृदय को बुझीगले भगवान निकटतर हो पार कारण प्रकृति केवल दुईट पथ सृष्टि करी चली जाओ नचे छाड़ी चली जाओ कहीं यही सांगे कि नहीं जबार कौन व्यवस्था नहीं

0: ओडिशा सरकारक समवाय विभाग तरफ राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानकु सूचित करा जाउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीनाबादाम हलदी ओ हरड़ चासर बीमा पंजीकरण कराई नियंतु। भाग चासी ऋणी ओ अणऋणी चासी समस्ते निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुधा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैंप्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका देवाक पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।
1: हे प्रभु, ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
2: अरे राजू भाई, पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे मु तो मो घरे सोलर लगे देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
1: सतरे भाई?
2: हां भाई, मात्र 1875 टंका रे पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नाही।
3: आज्ञा हां, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु।
4: श्रोता बंधु, आज विश्व मस्तिष्क दिवस। यह हूँ एक विश्व स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम जहाँ प्रत्येक जुलाई 22 तारीख में पालन कराए। मस्तिष्क रोग सचेतनता को स्मरण करष पालन कराए। यह दिन में विभिन्न स्थानीय एवं विश्वस्तरीय संगठन एवं संप्रदाय एकत्रित हमें जार उद्देश्य हूँ स्नायुगत अवस्थार स्वास्थ्य सेवा शिक्षा एवं गवेषणा विषय सचेतनता एवं प्रचार वृद्धि उपरे गुरुत्वारोप करिबा।

0: ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ନମସ୍କାର, କେନ୍ଦୁଝର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।
1: आपने ट्यून किया है विविध भारती और सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं बाघी फिल्म का गीत। मोनाली ठाकुर और मीत ब्रोज की आवाजों में कुमार की रचना, मीत ब्रोज का संगीत।

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और प्रीतम का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए अख्तर चन्नाल की आवाज में। फिल्म का नाम फैंटम।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: हेट स्टोरी 3। इस फिल्म का गीत अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजों में रश्मि विराग ने इसे लिखा है, अमाल मालिक का संगीत।

A.R. रहमान और श्रीनिधि वेंकटेश की आवाजों में अभी आपने सुना ओके जानू फिल्म का ये गीत, गुलजार के बोल थे और संगीत था A.R. रहमान का। इस गीत के साथ ही आज के इस चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र माथुर।

0: तुम्हारे रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
2: मैंने

मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और मां थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहां आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली फिल्म

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

सन 1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे, एक गाना था ये।

0: घर है।
1: और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ गाइए।

1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहां हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की। लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नयन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

सन 1962 में चलते हैं, जब मनोज कुमार मुकेश की आवाज के जरिए पर्दे पर होंठ हिलाते हुए कह रहे हैं।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना ना गुनगुनाए।

0: यार।
1: यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए, वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज हैं, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा चैन।
1: आज के फनकार।

0: जे जे इटा कौन प्लांट?
1: टैंजेरीन, बहुत मीठा, भांगीवनी, है ना? फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, एप भी करूँ ची।
0: जे जे रुहो, लिंक रे क्लिक करो नहीं।
1: कहीं की?
0: इटा एसएमएस स्कैम, क्लिक करी बो तो तुम्हारो बैंक डिटेल्स है वो चोरी।
1: ओह, थैंक्स कपूर, बंचे ही देलू, एही ने तोरो बुद्धिमत्तारो फड़ो।
2: आरबीआई कहे स्मार्ट बनो कूल रहो।
3: हे प्रभु ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी
4: अरे राजू भाई पीएम सूर्यघर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति
3: सतरे भाई
4: हां भाई मात्र 1875 टंका रे पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं
5: आज्ञा हां आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु
6: শ্রোতাবন্ধু আমি সমস্তে আমনের ভব্য রঙ্গমঞ্চর কলাকার যেউঠি বিচার ভাবনা স্মৃতি কেবে শেষ হুয়ে না বরং নাটকর দৃশ্য পরি তাহা চালি থাকে আম ভিতরের রঙ্গমঞ্চ আম সচেতন অভিজ্ঞতার সার যা প্রায়ত আনন্দ এবং দুঃখ মুক্তি এবং বন্ধন উভয়ের উৎস

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत का है। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
1: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबिल मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
1: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
1: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
2: जी,
1: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
2: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
1: जी,
2: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
1: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
2: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
1: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
2: जी,
1: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
2: जी,
1: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
2: जी
1: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है जिसे मोरुंग कहते हैं।
2: जी,
1: ये मोरुंग होता क्या है?
2: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
1: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
2: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
1: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
2: जी,
1: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
2: जी।
1: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
2: जी।
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
2: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है, और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
3: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
4: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
3: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
5: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
4: जी मालिक, ये बात तो है।
5: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
4: जी मालिक, कोशिश करता हूं। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
5: अच्छा,
4: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
5: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
4: जी मालिक।
3: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
4: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
5: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
3: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
6: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा मेरी प्यारी सुंदरिया।
3: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
7: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 शेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 शेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
6: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 शेर दूध दोहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
7: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
6: जी सेठ जी।
3: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
7: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
6: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
7: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
3: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
6: सुंदरिया, तुम? मेरी प्यारी सुंदरिया।
3: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
6: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
7: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
6: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
7: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
6: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
3: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
6: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
3: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
8: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे तुमसे यहां मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
6: जी सेठ जी।
8: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
6: धन्यवाद सेठ जी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
9: नमस्कार श्रोताओ, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
10: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
9: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
10: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह।

0: लेते हैं। गारू, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
1: मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ये कहानी शिलोंग की है।
0: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलोंग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
2: यहीं कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ वो रही।
0: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक बिल्ली की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
1: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
0: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
1: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
2: हाँ यहां से अंदर चलता हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
0: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
1: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है। अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
0: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
2: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
2: मेरा नाम यूजीन है। मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
2: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
2: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
2: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना। तो
2: नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ। मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
2: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
2: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे। आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। समझो मेरी बात, वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
2: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा। अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी, बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
1: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कू कू करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
0: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
3: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
4: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापिस चलो।
2: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
3: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
2: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
3: हैं? अब अच्छा समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
2: नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
3: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
2: क्या?
3: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
2: मैडम मैं खरीदूंगा इसे, मैं ऐसे ही खरीदूंगा।
3: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
2: मुझे यही चाहिए।
3: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
2: नहीं।
3: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
2: जी नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
3: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
2: यूं ही?
3: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
2: क्या मतलब? अगर इसकी टांगें खराब हैं तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
3: अच्छा अच्छा समझी समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
2: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना, इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है, मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
3: पर बेटा ये तो
2: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
3: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
2: तो यही इसकी कीमत भी है, अब ये रहे 1500 रुपए, अब और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
3: देखो।

0: बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ। लेकिन बेटा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
1: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
0: अरे बेटा, ये
1: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं
1: भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
0: बेटा।
1: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
0: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो।
1: आजा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग
6: प्रचार कलु एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यक्रम 1333 भाग आकाशवाणी केन्दुझर समय पूर्वाह्न 11:00 परवर्ती कार्यक्रम रिले करी प्रचार करुछु विविध भारती राष्ट्रीय सेवारू।

हेमा सरदेसाई की आवाज़ में ये गीत आपको सुनवाते हैं, समीर के बोल, जवाहर वत्तल का संगीत और एल्बम का नाम सजना।

मिताली सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आइए सुनते हैं। शब्दकार इब्राहिम अश्क, संगीत भूपिंदर सिंह का, और एल्बम कुछ इंतज़ार है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: ये है हरिहरन की आवाज, शब्दकार ताहिर फराज, संगीत हरिहरन का एल्बम जश्न।

दलेर मेहंदी की आवाज़ में ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। दलेर मेहंदी का ये संगीत है और गीत है दलेर मेहंदी और संजीव आनंद का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब मधुश्री की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना, राजेश रोशन का संगीत एल्बम मोक्ष।

अगली जो आवाज़ें हैं जगजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, बोल निदा फाजली के, जगजीत सिंह का संगीत और एल्बम किसका चेहरा।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं पामेला जैन की आवाज में मनोज दर्पण का लिखा हुआ ये गाना, बबली का संगीत, एल्बम मेरा घूंघटा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में एनएचपीसी की तीस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुई दुखद दुर्घटना में जान मान की हानि पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवान को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स, सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है। इस बैठक से अलग डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मुकेश के गाए कुछ दो गाने। वीर दुर्गादास फिल्म का गाना सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, भरत व्यास के बोल, एस एन त्रिपाठी का संगीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम उजाला।

0: हाथ रख कर वो जा रहे हैं देखो दो प्यार करने वाले दुनिया वालों से दूर चलने वाले।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने आप सुनेंगे एक ब्रेक के बाद।

हम हाजिर हैं यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गानों को सुनवाने के लिए। तीसरा कौन, इस फिल्म का गाना बोल है आनंद बख्शी के, संगीतकार राहुल देव बर्मन। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के गाए युगल गीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
0: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: लीजिए अब सुनिए शोर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना सावन फिल्म से है, प्रेम धवन के बोल, संगीत है हंसराज बहल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के गाए कुछ युगल गाने। पूनम की रात इस फिल्म का गाना, शैलेंद्र का लिखा हुआ, सलील चौधरी का संगीत।

आज के यादों की महफिल इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना राज फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. forming opposition protests over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on the feet protesting on the paper leak issue. Speaker Om Birla urged the opposition to cooperate for smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. He stated that the government is ready for discussion since day one. The minister said any discussion in the House must be conducted under established rules and requires proper arrangements. He requested floor leaders of all parties for the duration and the rule under which the discussion will be held. Mr. Rijiju emphasized that the government wants a meaningful and constructive discussion involving all sides, keeping in mind the future of the youth of the country. K.C. Venugopal of the Congress and Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party raised the issue of student protests. Speaker Om Birla said the government is ready for discussion on the issue and everyone must come together for the timing of the discussion. As the pandemonium continued, Mr. Birla adjourned the House till 2 p.m. The same scene was also witnessed in the Rajya Sabha. The Indian Navy inducted the second anti-submarine warfare shallow water craft of the Mahe class INS Malvan at Karwar in Karnataka today. This is a significant achievement in India's indigenous warship building. Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Air Staff, was the chief guest at the ceremony. Speaking on this occasion, Air Chief Marshal A.P. Singh appreciated the Navy for its efforts towards Atmanirbhar Bharat and said that INS Malvan will play a crucial role in maritime security of the country's coastal region. INS Malvan anti-submarine watercraft built by Cochin Shipyard under Atmanirbhar Bharat mission uses more than 80% indigenous equipment and technology.
1: As far as naval shipbuilding is concerned, India has always had an edge and we had carried our legacy forward in making ships. So very good progress has been made in our Atmanirbharta as far as shipbuilding is concerned. I just hope that, you know, other two services, especially Indian Air Force, learns the lesson as to how Indian Navy has been able to, you know, get this whole concept right, where you have your Indian Navy officers who are embedded in your shipbuilding right from the beginning.
2: In Sikkim, search and rescue operation is on for the third day today to evacuate people trapped inside the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project at Samardung in Namchi district. Official sources said that 12 bodies have been recovered so far and 13 persons are believed to be trapped inside the ill-fated tunnel. Governor Om Prakash Mathur and Chief Minister Prem Singh Tamang Gole visited the accident site yesterday. Chief Minister announced to set up a high-level inquiry to find out the causes of the incident. Mr. Gole further said that the incident might have happened due to the explosion of methane gas and not because of landslides. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 16 metro stations have been closed till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakamba Road, Supreme Court, Seva Tirth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprasth, Khan Market, Jorbagh, and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House, and Central Secretariat. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today participated in the Quad Foreign Ministers meeting at Manila in Philippines. In a joint statement, India, Japan, Australia and United States reaffirmed the commitment to strengthen a free and open Indo-Pacific and unwavering support for ASEAN unity and centrality. During the meeting, they focused on regional challenges and opportunities to support the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. Key discussion areas include maritime and transnational security, economic prosperity, critical and emerging technologies, and emergency response. They are united in the conviction that peace and stability in the Indo-Pacific maritime domain underpin the security and prosperity of the region. And that is the end of this news bulletin.
3: आपड़े कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र। अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमजी अछि
4: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखीतिली एवं आजि मध्य चेटीनाड सिमेंट उपरे
5: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरं पीढ़ी पाई रही थाए चेटीनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटीनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
6: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरा 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हे जिवो ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु
7: ठीक लागुनी स्कैम भी हे पारे

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया।

0: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
1: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कदंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने आईएएसवी त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज

0: फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
1: In this era of volatility and disruption,
2: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉ. जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
3: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: अपण माने कार्यक्रम सुनचंती आकाशवाणी कटक केंद्ररु कार्यक्रम आम केंद्ररु प्रचारित होउची 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जोगे। अमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनि परिबे एही विज्ञापन परे।
5: बन्या हेउ बा महावात्या सबु परिस्थिति रे
6: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
5: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
6: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
5: केवल आकाशवाणी

अगला गीत सुनते हैं रंगीला राजा फिल्म का गाना तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में असद भोपाली के बोल संगीत शिवराम का।

रंगीला राजा फिल्म का ये गाना आपने सुना तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ों में, असद भोपाली के बोल और संगीत शिवराम का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला जो गीत है, जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

रंग हो गया गुलाबी गुलाबी।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बिल्कुल बढ़िया।
2: बिल्कुल मॉनसून में
1: बारिश का आनंद ले रही हूँ, है ना?
2: बिल्कुल।
1: देखिए कई जगहों पर तो अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, उसका रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो हम तो अपने सभी सखियों से, सखाओं से, साथियों से यही कहना चाहते हैं कि आप सावधानी रखिए और बारिश में और भी बहुत सारी पानी से संबंधित सावधानियां, खान पान से संबंधित सावधानियां, तो वो तो आपको रखनी ही है जब तक ये मॉनसून चलेगा।
2: बिल्कुल। और जितना ज्यादा हम अपना ध्यान रखेंगे उतना ही इस मॉनसून का हम लुत्फ भी उठा सकते हैं,
1: आनंद ले सकते हैं, अन्यथा बीमार होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। चलिए आज के विषयों की हम बात कर लेते हैं आरती। तो हाँ, पहला विषय भी हमारा फिटनेस से संबंधित है, महिलाएं और फिटनेस, ये हमारा पहला विषय है। और दूसरा
2: है लेखिका ज्योति जैन जी से ममता सिंह जी की बातचीत होगी, जिसमें वो फिटनेस के बारे में हमें बताएंगी, जानकारी देंगी, तो उसको आप सुनिएगा जरूर। हाँ। और साथ ही हम बात करेंगे साड़ियों के संसार के अंतर्गत, आज हम मणिपुरी साड़ी लेकर आए।
1: अच्छा, जो कि मणिपुर में बनती है।
2: जी हाँ, बिल्कुल।
1: और अगला जो विषय है हमारा, हमारा शब्द, हमारा विचार आपके, तो जो शब्द है वो है फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची तो हमें नहीं करनी चाहिए, मितव्ययता से रहना चाहिए, सोच समझ कर कहाँ जरूरत है वहीं पर पैसा खर्चा करें, क्योंकि अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो हमारे पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है, बचत नहीं हो पाती है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है,
2: क्योंकि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, हाँ। तो बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि हमें बजट के हिसाब से चलना है, हम जो हमें जरूरत की चीजें नहीं भी होती हैं उसको भी खरीद लाते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। तो आप बताइए, आपने क्या फिजूल खर्ची करी है, या फिर आप अपने अच्छी तरीके से अपने बजट के हिसाब से चलते हैं?
1: तो ये आप हमें बता सकते हैं, और हमारा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com, तो वहां जाकर के आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इसके बारे में। और व्यंजन की भी आज बात करेंगे। देखिए आज फिटनेस की बहुत सारी बात हो रही है, तो ज्वार के व्यंजन, अब ज्वार भी एक ऐसा अनाज है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उससे बनने वाले जो व्यंजन है आपके जिस जगह पर, देखिए हमारा जो देश है विविधता से भरा हुआ देश है, हर राज्य में अलग अलग तरह, एक ही चीज से अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं, तो आप जहां पर रहते हैं, आपके एरिया में, आपके घर में ज्वार से किस तरह के और क्या व्यंजन बनाए जाते हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं।
2: क्योंकि जो फिटनेस का ध्यान रखते हैं वो अधिकतर ये ज्वार ही खाते हैं, तो आप बताइए आप किस तरीके से आप इसको ज्वार को बनाते हैं।
1: हाँ, तो रोटी तो बनती ही है, ये तो पारंपरिक तौर पर बहुत वर्षों से हम देखते आए हैं हमारी दादी नानी के जमाने से कि ज्वार के आटे से रोटी बनाई जाती है और विभिन्न तरह की उसके साथ दालें सब्जियां उसके साथ खाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी और कोई व्यंजन अगर बनाए जाते हैं तो उनके बारे में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। और जब फिटनेस की बात आती है तो फिटनेस तो तभी आती है जब हमारा मन चंगा हो, दिल बहुत स्वस्थ हो, दिमाग बहुत स्वस्थ हो, और उसका एक बहुत ही अच्छा साधन है और वो है संगीत। चलिए सुनते हैं एक गीत।

0: आरती देखो, पहली फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया, हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज़ें, और इसमें भी बारिश से संबंधित बातें थी, लेकिन बड़ी खुशी वाली बातें थी। लेकिन ये खुशी तभी बरकरार रह सकती जब हम अपने फिटनेस का ध्यान रखें, और ख़ास तौर पर जब बारिश बहुत हो रही हो, मानसून का सीज़न हो, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है, तभी इनका आनंद ले सकते हैं।
1: तो चलो फिटनेस के ऊपर हम और कुछ बताने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, एक लेखिका है ज्योति जैन उनका नाम है, और वैसे तो वो लेखिका है, उन्होंने अपने लेखन के बारे में भी हमें बताया है, उनकी पुस्तकों के बारे में भी बताया है, लेकिन आज इस अंक में वो फिटनेस की बातें करने जा रही हैं। तो सुनते हैं उनकी ये बातें, और आने वाले अंकों में हम उनके लेखन के बारे में भी जानेंगे।
1: बिल्कुल, और ममता जी ने इनका इंटरव्यू लिया है, इनसे बातचीत करी है, तो सुनते हैं।
0: बिल्कुल
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और विविध भारती के स्टूडियो में साहित्यकार ज्योति जैन जी आई हैं, आपका हम सखी सहेली की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं। ज्योति जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत।
3: नमस्कार ममता जी, और सचमुच सखी सहेली में आकर के मुझे बस सखी वाली ही फीलिंग आ रही है, तो आपका बहुत सारा धन्यवाद।
2: सखी सहेली आप सुनती रही हैं लगातार?
3: जी जी बिल्कुल।
2: तो आपको कैसा लगता है?
3: ऐसा लगता है कि देखिए, हम अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे सखी सहेली कार्यक्रम, उसके विज्ञापन भी सुनते थे कि सखी सहेली कार्यक्रम सुनने के लिए पुरुष वर्ग भी किस तरह से वो समय सखा भी सुनते हैं, तो अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे उसमें खुद आकर के तो एक अद्भुत अनुभूति हो रही है कि अरे वाह, मैं खुद भी एक सखी बन गई हूँ यहाँ आकर।
2: जी, हम सखियों को बता दें कि ज्योति जी के पास बहुत सारे हुनर हैं, और एक ऐसा हुनर है जो आप सबके लिए प्रेरणा की बात है। इन्होंने अपने फिटनेस के लिए बहुत कुछ किया है, डाइट से लेकर जिम जाती हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि बताइए सखियों को अपने फिटनेस के लिए क्या कुछ करना चाहिए।
3: सबसे पहले तो मैं सभी सखियों से ये कहना चाहूँगी कि स्वयं को कमतर ना आके, क्योंकि आपकी जो देखभाल वाली लिस्ट है उसमें आपका नाम सबसे आखिरी में होता है।
2: बिल्कुल,
3: और ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये आप अपने साथ न्याय नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप परिवार में हर सदस्य का ध्यान रखती हैं। आपको पता होता है आपकी सास को क्या पसंद है, ससुर जी को क्या पसंद है, या माता पिता हैं तो उनको क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, हर एक का ध्यान रखती है और उसके अनुसार आप व्यंजन बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने लिए सलाद काटा,
2: अपने अकेले के लिए कभी खाना बनाया?
3: नहीं, अमूमन नहीं होता।
2: बिल्कुल,
3: तो ये पहले तो यहाँ से शुरू हो जाए कि आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना है। आपने जिम की बात कही है, तो ममता जी मैं इसको यहाँ से शुरू करती हूँ कि लगभग 13-14 साल पूर्व मुझे अस्थमा था, और पुराने लोग यह कहते पाए जाते हैं कि दमा जो है वो दम के साथ जाता है। अस्थमा यानी दमा, सांस की बीमारी, तो कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। मैंने भी सुना ये कि, तो मुझे एक मन में चीज़ लगी कि अरे ये मुझे बहुत ही गंभीर बीमारी है
2: जी,
3: और मुझे इससे अब बचना है। यहाँ तक कि मेरे स्टेराइड्स पर थी
2: जी,
3: तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं चूंकि खिलाड़ी रही हूँ, एनसीसी की कैडेट रही हूँ,
2: बैडमिंटन खिलाड़ी
3: रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने फिजिकल जो फिटनेस है वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है
2: जी।
3: तो उस वक्त जब मैंने जिम ज्वाइन किया, और धीरे धीरे देखिए अभी क्या होता है, मैं कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे डेडलिफ्ट है 40 किलो का, या बेंच प्रेस है 25 किलो का डंबल का, तो उनको लगता है कि बड़ा अच्छा है ये तो। लेकिन कैसे होता है कि आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं। आप एकदम से आप 50 किलो का या 40 किलो का या 25 किलो का डंबल नहीं उठा सकते हो। तो जब मैंने इसकी शुरुआत की तब मैंने 2.5 किलो के डंबल से शुरू किया, पाँच किलो से शुरू किया। तो जब जब मैंने जिम जाना शुरू किया, जब मुझे लगा कि नहीं सेहत के प्रति हमको जागरूकता चाहिए, तो मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मैं स्ट्रांग होती जा रही हूँ। तो जब आप भीतर से भी स्ट्रांग होते हैं तो आपको बीमारियाँ फिर थोड़ी सी आपसे दूर भागती हैं, बीमारियाँ आपसे डरने लगती हैं। ये मैंने जिम शुरू किया और जब सिक्किम में हम गए पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ से आकर के मैंने जितनी स्टेरॉइड्स थी वो पैक की हुई थी, वो मैंने घर आके डस्टबिन में डाल दी। मुझे उसके बाद स्टेरॉइड्स नहीं लेना पड़ी। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपका शरीर मजबूत होता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो बीमारियों पर आप इस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं
2: जी।
3: और तब मैंने एक कहानी लिखी फतह, इसी थीम को लेकर के तब मैंने कहानी लिखी। दूसरी चीज ये हो गई है कि डाइट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जल्दी छोटी उम्र से शुरू कर दें, यानी महिलाएं अगर 30 बरस से भी शुरू कर दें तो भी बहुत अच्छा है, और बड़ी उम्र से शुरू करें तो भी, बोलते हैं ना कि अभी समय नहीं बीता है, जब जागे तभी सवेरा। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए
2: जी।
3: प्रोटीन यानी, और मैं ये नहीं कहती कि प्रोटीन पाउडर लीजिए, मैंने कभी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया
2: बिल्कुल,
3: लेकिन पनीर है, स्प्राउट से, मूंग मोठ, चना चावला तो महिलाएं अपने किचन में रोज गलाएं खाएं, और छाछ लें, सत्तू लें, सत्तू तो आदिकाल से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, हाई प्रोटीन है उसमें। तो अपने डाइट का अपने को ध्यान रखना चाहिए
2: जी।
3: मैं ये भी नहीं कहती कि आप कचोरी समोसे ना खाओ, सैंडविच ना खाओ, खाएं कभी कभी, लेकिन आपके पेट में क्या जा रहा है उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
2: तो ये तो डाइट की बात हो गई, और हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आप बहुत बड़ा डंबल उठा के और झुकी हुई हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं, और एक में देखा कि आप टायर उठा उठा के फेंक रही हैं। तो ये कितने समय बाद ये शक्ति आपके भीतर पैदा हुई?
3: ये मेरे ख्याल से डेडलिफ्ट तो मैंने थोड़े टाइम बाद शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो 20 केजी का बार होता है, 20 किलो का बार, तो पहले खाली बार से शुरू किया, फिर उसमें 5-5 किलो के चक्के डाले, पहिए जैसे होते हैं वो डाले, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो वही कि आप एक झटके से नहीं कर सकते। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जिम जाते हैं तो वहाँ हर जिम में, या तो आप कुछ ऐसे स्तरीय जिम ढूंढें, जिम में ट्रेनर जो होते हैं वहाँ, जो भी

0: जो आपको अटेंड करते हैं, वो पहले पूछते हैं आपकी कोई सर्जरी हुई है, आप उसको सब सच सच बताइए,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना। फिर वो पूछते हैं आपकी कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, वो आप बताइए। आपको बैक पेन तो नहीं है, वो बताइए। नी पेन तो नहीं है, वो बताइए। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे एक घुटने में मेरे बहुत सालों पहले पस हो गया था और उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई और करीब 2.5 महीने तक वो प्लास्टर रहा। तब मैं घुटना नहीं मोड़ पाती थी, मुझे नीचे बैठना मना था क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती थी। लेकिन फिर जब जिम शुरू किया तो स्क्वाट्स लगाए तो मैं नहीं लगा पाती थी, लेकिन ट्रेनर के देखरेख में धीरे धीरे स्क्वाट्स लगाना शुरू किया और आज मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो कोई भी चीज़ को आप निरंतर अभ्यास से करेंगे और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जिस जगह में हूँ आप भी उस जगह पर आ सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लेखक को तो हाथ की तकलीफ अमूमन हो जाती है
0: होती है
1: क्योंकि वो नियमित रूप से
0: गर्दन की
1: कलम,
0: होती है,
1: हाँ
0: गर्दन की
1: गर्दन की,
0: होती है।
1: हाथ की।
0: तो मैं भी जब लिखती हूँ, मैं अभी भी कागज़ कलम पे लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं अभी कंप्यूटर युग में है पर मैं कंप्यूटर वाली अभी भी नहीं हूँ, मुझे लिखने के लिए कागज़ और कलम ही चाहिए। तो मैं लिखती हूँ, कई बार लंबा भी लिखना पड़ता है, लेकिन बीच में आप थोड़ा सा गर्दन को चारों तरफ घुमा लीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। जब आप अभ्यास में, आप शारीरिक रूप से आप मजबूत हैं तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान नहीं करती हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और अब चलते चलते हम हमारी तमाम सखियों को बताइए कि आपने तो अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत सारे समझौते किए, समझौता कहें या अपनी चॉइस पर, अपनी शर्त पर आपने छोड़ी, कैजुअल अनाउंसर रही, फिर आकाशवाणी में अनाउंसर बनी, वो आपने छोड़ा परिवार के लिए, अपने प्रेम के तहत, और पायलट बनते बनते रह गई, रिटर्न में आप क्वालिफाई की। लेकिन सखियों से आप क्या कहेंगी कि आज के ज़माने में उन्हें क्या करना चाहिए?
0: देखिए, जमाना बदला है ना। इस बदलाव को सभी लोगों ने स्वीकार किया है।
1: जी
0: एक ज़माना था जब मैंने ये चीज़ें छोड़ी, लेकिन आज मैं मीडिया के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ। और ज़माना बदला है तो, और अब चीज़ें भी बदली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल लड़कियों को ये सब कुछ छोड़ के और करना पड़ता है। आजकल की जो बच्चियां हैं वो दोहरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, और मुझे लगता है कि अपने सपनों को जीवित रखें, उनको जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के प्रति जो अपना नज़रिया है वो सकारात्मक रखें तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: मैं यहाँ एक चीज़ और कहूँगी कि
1: हाँ
0: हक तो है ही। देखिए, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो वहाँ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो कर्तव्यों के साथ अपने अधिकार को प्राप्त करें,
1: जी
0: इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
1: जी और इस समय बहुत बेहतर होगा कि एक गाना हम सुनवा दें अपनी सखियों को। कौन सा गाना?
0: मैं ना खूब मस्तीखोर हूँ, मैं खुल के जीती हूँ, खुल के नाचती हूँ जब मौका मिलता
1: जी
0: है।
1: जी
0: मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है। मैंने

0: ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: आपका विविध भारती के स्टूडियो में आई और सखियों सहेलियों से इतनी उम्दा जानकारी वाली
1: जी
0: बातें की और इतनी इतनी प्रेरक बातें आपने साझा
1: जी
0: की।
1: जी बहुत
0: शुक्रिया
1: धन्यवाद ममता जी, आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ हो।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: तो आरती, देखो हमारी जो सखी ज्योति जैन है उनकी ममता सिंह से जो बातचीत हुई वो हमने सुनी और उन्होंने भी फिटनेस के बारे में काफ़ी कुछ बातें हमें बताई।
1: जी
2: और देखिए, हंसना, खिलखिलाना, नृत्य करना, गीत सुनना, ये भी फिटनेस के
1: बिल्कुल, ये
2: कुछ
1: भी
2: राज
1: फिटनेस में ही आता है।
2: तो ये उन्होंने हमें
1: जी
2: बताया। चलिए अब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो उसे वो सबसे आखिर में रख देती हैं। जबकि सच ये होता है कि यदि महिला स्वस्थ और फिट होगी तभी परिवार की भी खुशहाल और स्वस्थ रहेगा
1: बिल्कुल।
2: ना।
1: और फिटनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पतले दिखें। पतले दिखना ही फिटनेस नहीं होता है। फिटनेस का अर्थ होता है शरीर का स्वस्थ होना, मन का प्रसन्न होना और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना। और महिलाओं के लिए रोजाना 30 से लेकर 45 मिनट की जो शारीरिक गतिविधि होती है वो बहुत लाभदायक होती है
2: हाँ,
1: उसमें।
2: और बहुत सारी महिलाएं ये सोचती कि हम घर का काम करते हैं ना तो उससे तो हमारे शरीर की हलचल हो जाती है, तो अब हमें और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसके जो पोस्चर होते हैं
1: बिल्कुल।
2: वो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर की बनावट के लिए वो काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो काम अपनी जगह बहुत अच्छी बात है कि
1: जी
2: करना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए हम थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़े आसन करें, तो
1: बिल्कुल,
2: वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं।
1: क्योंकि इतने काम के बीच में अगर हम अपने लिए 30 मिनट ना निकालें ये तो अपने खुद के साथ नाइंसाफी हो
2: हाँ,
1: जाएगी।
2: लेकिन कई महिलाएं नहीं निकाल पाती,
1: जी
2: घर की व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती
1: जी
2: है, बड़ा परिवार होता है, दिन भर काम करते हैं, और उसके बाद में अगर वो अपने लिए समय निकालती है तो कई बार घर के लोग कहने भी लग जाते हैं कि अरे इतना काम पड़ा है कि तुम ये क्या करने लगी हो। तो कई महिलाओं के साथ इस तरह की परिस्थितियाँ भी होती हैं। खैर, लेकिन तेज़ कदमों से चलना, योग, प्राणायाम, साइकिल चलाना, नृत्य या हल्की एक्सरसाइज, इनमें से कोई भी गतिविधि नियमित रूप से अगर अपनाई जाए तो काफ़ी अच्छा होता है, और संतुलित आहार भी फिटनेस की मजबूत नींव होता है।
1: बिल्कुल। और आप खाने में हरी सब्जियां ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दालें हैं, दूध है, मोटे अनाज हैं, पर्याप्त पानी और प्रोटीन की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो नहीं खाते उस तरीके के तो वो अंडे नहीं खाते।

0: तो पनीर खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पनीर ले सकते हैं, दूध की बनी चीज़ें ले सकते हैं, और ये जो जंक फूड होते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा मीठे चीज़ें होती हैं, उनको अपना लें तो ज़्यादा बेहतर है।
1: हाँ, डिब्बाबंद जो भोजन आजकल बहुत प्रचलन में है,
0: जी
1: तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लें और उसके बाद ही उनका उपयोग करें। और हमारा तो सुझाव यही है कि उसकी बजाय आप घर में कोई भी चीज़
0: बिल्कुल,
1: बना
0: क्योंकि
1: कर
0: हम
1: खाएं तो।
0: छोटी सी भी चीज़ जो जंक फूड वाला लेते हैं ना, उसके ऊपर आप देखिए कितनी कैलोरी लिखी होती है ना, तो
1: बिल्कुल
0: उसमें हमें जितना चाहिए उसे कहीं कई गुना ज़्यादा हम थोड़े से खाने में ही ले लेते हैं, तो उसको आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है।
1: इसके अलावा मानसिक फिटनेस भी उतनी ही आवश्यक होती है। तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग, अच्छी नींद लेना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना, ये बहुत मददगार साबित होते हैं इसमें।
0: बिल्कुल, और जीवन के अलग अलग चरण हैं, जैसे किशोरावस्था हो, या जो गर्भावस्था है, प्रसव के बाद का समय है, या रोजने वृत्ति का समय है, ये महिलाओं की शारीरिक इसमें ज़रूरतें जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराना और विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, ये जो रजोनिवृत्ति की तुमने बात की, तो उस समय भी महिलाओं को बहुत समस्याओं का
0: बिल्कुल
1: सामना करना पड़ता है उनको। जैसे हॉट फ्लशेस आना और बार बार मुंह सूखना, प्यास लगना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं उन्हें। तो घर के लोगों का भी तो ये कर्तव्य बनता है कि वो भी अगर ऐसी समस्या उनके साथ है तो थोड़ा उनका साथ दें और उनका ख्याल रखें। तो इस तरह से अब इन बातों का ख्याल रख के फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है। इसके
0: बिल्कुल
1: अलावा फिटनेस कोई विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर महिला स्वस्थ है तो ही वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी और सशक्त समाज की वो पहचान भी होती है। इसके
0: बिल्कुल
1: लिए महिलाओं की फिटनेस पर बहुत अधिक ध्यान देना
0: बिल्कुल, अगर आप
1: ज़रूरी
0: जिम
1: है।
0: नहीं जा पा रही हैं, डंबल्स नहीं हैं आपके पास, तो आप एक एक लीटर की जो बॉटल्स होती हैं है ना, उसके ज़रिए भी आप कर सकती हैं, डंबल्स का काम उससे ले सकती हैं, तो आप
1: बिल्कुल।
0: घर में ही कुछ एक्सरसाइज हैं वो करेंगी ना, तो आपको फ़ायदा दिखने लगेगा।
1: फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और वो जो गीत हमने सुना शगुन फिल्म का, उसके पहले हम फिटनेस की बातें कर रहे थे। हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस बारे में अपने जो दिल के जो बातें थी या जो वो बताना चाहते थे हमें लिख भेजी है, तो हम एक एक करके हम अपनी सखियों को बताते हैं। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि फिटनेस उम्र की मोहताज नहीं होती, चाहे किशोरी हो, गृहिणी, कामकाजी महिला या वरिष्ठ महिला, सभी के लिए सक्रिय और स्वस्थ रहना समान रूप से महत्वपूर्ण है। सैर, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद महिलाओं को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इससे तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अनेक बीमारियों से भी बचाव होता है।
1: बिल्कुल। एक और हमारी सखी हैं जो लिखते हैं कि 50 के बाद प्रोटीन के रूप में सोयाबीन, टोफू मिल्क और स्प्राउट, खासकर मूंग और मूंगफली, काले चने हर महिला के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: और एक हमारी जो साथी हैं वो ये भी लिख रही हैं कि व्यायाम से एंडोर्फिन यानी कि जो हैप्पी हार्मोन से वो निकलते हैं जो तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स को कम करते हैं। हड्डियों की मजबूती उम्र के बढ़ने के साथ महिलाओं में हड्डियों के कमज़ोर होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डियाँ मजबूत होती है। ऊर्जा और आत्मविश्वास, फिट रहने से शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, जिससे महिलाएं अपने दैनिक कार्य अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कर पाती हैं।
1: जी। और एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि मैं सुबह सैर को जाती हूँ, थोड़ा बहुत योग व्यायाम करती हूँ, बाहर का खाना जो होता है उसको खाने से परहेज करती हूँ कभी कभार को छोड़कर, और मौसमी फल सब्जी खाती हूँ। संगीत बहुत तरोताजा रखता है इसलिए विविध भारती के प्रोग्राम सुनना नहीं छोड़ती हूँ। मनोरंजन के लिए सखी सहेलियों के साथ गेट टुगेदर भी करती हूँ।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि योग और प्राणायाम मानसिक शांति और लचीलेपन के लिए, योग सबसे उत्तम है। पिलेट्स, कोर स्ट्रेंथ और बॉडी पोस्चर सुधारने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग हृदय स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट यानी कि रोजाना 30 मिनट तेज चलना फायदेमंद होता है। और इस तरह की फिटनेस से संबंधित बहुत सारी बातें हमारी सखियों ने हमें लिख करके भेजी, तो हम उन सभी को धन्यवाद कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मणिपुरी साड़ी के बारे में। तो मणिपुरी जो साड़ी है ये साड़ी आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से यानी कि राजा रानियों के समय से काफ़ी लोकप्रिय है। पुराने समय में इस साड़ी को रानियां भी पहना करती थी। मणिपुर की साड़ी को कारीगर मशीन का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि हाथ की बुनाई से बनाते हैं।
1: जी, यही इसकी खासियत भी है। इसे बनाने में कुल 15 से 20 दिनों का समय लगता था और मणिपुर की साड़ियों को आज भी महिलाएं खास मौकों पर पहनती हैं। इन साड़ियों को पहनकर वो अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। मणिपुरी साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। ये राजघरानाओं की जो राजघराने होते थे उनकी परंपरा और महिलाओं के सामाजिक सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।
0: हाँ, बिल्कुल। वैसे भी जब कोई भी महिला जब साड़ी पहनती है तो एक एलिगेंट लुक, मतलब यूं कह सकते हैं कि बहुत सुंदरता उसमें नजर आती है। और जब हमारे देश में विभिन्न तरह की साड़ियां बनती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की साड़ियां बनती है, और जब कोई त्योहार आता है तो उस प्रांत की वो खास जो साड़ी है वो पहनी जाती है, तो सब महिलाएं एक तरह की साड़ी पहनती है, उस खूबसूरती का तो कहना ही क्या है ना। और मणिपुरी साड़ी और कपड़ों में दिखने वाले प्रसिद्ध टेम्पल डिज़ाइन और मोइरांग फी कहा जाता है, जो डिज़ाइन होते हैं उनका नाम है ये। और इस डिज़ाइन का आविष्कार मोइरांग साम्राज्य की जो राजकुमारी थी थोड़बी, उन्होंने किया था। और मणिपुरी साड़ियों को प्रिंट या डाई करने के लिए पहले के समय में पेड़ों की छालों, पत्तियों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था।
1: बिल्कुल, पहले तो इसी प्राकृतिक तरीके से ही बनाते थे, कुछ भी अलग से रंग नहीं इस्तेमाल करते थे। इन सभी चीज़ों से कपड़ों पर कलर किया जाता था। यही कारण है कि ये साड़ियाँ सालों साल अपनी चमक नहीं खोती हैं। मणिपुरी साड़ी जो होती है वो सिर्फ रानियों तक सीमित नहीं थी बल्कि

0: आज भी ये अपने हल्के और आरामदायक फैब्रिक, टेम्पल बॉर्डर और खूबसूरती के लिए महिलाओं के बीच काफी चलन में है।
1: बिल्कुल, और ये साड़ियाँ मलबरी सिल्क, एरी सिल्क और कॉटन सिल्क ब्लेंड से तैयार की जाती है। ये सिल्क हल्का और सॉफ्ट होने के कारण बेहद आरामदायक होता है। इन साड़ियों पर बनी टेम्पल बॉर्डर साड़ी के लुक को और खास बना देती है। मणिपुरी संस्कृति में रंगों का विशेष महत्व है और प्रत्येक रंग का अपना प्रतीक और अर्थ होता है।
0: जी, जैसे कि लाल रंग प्रेम और जुनून का प्रतीक होता है, जबकि हरा रंग उर्वरता और समृद्धि को दर्शाता है। पीला रंग खुशी और शुभता से जुड़ता है, जबकि सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ये साड़ियाँ हथकरघे पर बुनी जाती हैं, मुख्य रूप से इनमें सूती और रेशमी धागों का प्रयोग होता है।
1: हाँ, और ये जो रंग बिरंगी साड़ियाँ होती है ना, वाकई में ये अलग अलग जो रंग होते हैं, चटकदार जो रंग होते हैं, वो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। और कई महिलाएं तो हर तरह के रंगों
0: जब वो त्योहार जब वो पहन के आती ना, तो पता चलता है जहाँ त्योहार है।
1: बिल्कुल, और कुछ साड़ियां तो ऐसी होती है जिसमें मिले जुले रंग होते हैं, बहुत
0: जी
1: सारे रंगों की एक ही साड़ी बनी होती है,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: वो भी बड़ी एक इंद्रधनुष के रंगों की तरह बड़ी खूबसूरत लगती है। आजकल कुछ आधुनिक डिजाइनों में मिश्रित धागों का भी प्रयोग किया जाता है। महीन बुनाई और सादगी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके मुख्य प्रकार हैं फानेक, मयेक, नाइबी, क्षैतिज, धारियां वाला सबसे लोकप्रिय पारंपरिक फानेक है, कनाप फानेक विशेष अवसरों पर पहना जाने वाला सिला हुआ ये एक रूप है। ये अलग अलग तरह के नाम हैं जो अलग
0: बिल्कुल
1: अलग डिजाइन को दिए गए हैं।
0: जी। और फिर है मोइरोंग फी। मोइरोंग फी जो होता है वो प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र, जिसकी सीमा जो यानी बॉर्डर जो होता है उस पर विशेष आकृतियां बुनी जाती हैं, और इसे GI मान्यता भी प्राप्त है इस वाले इसको। और वांगखे फी, ये बेहद महीन और पारदर्शी मलमल यानी कि मसलिन जैसी जो होती है साड़ी वो होती है, और शुरुआत में इसे शाही परिवार के लिए वांगखे क्षेत्र में बुना जाता था।
1: हाँ,
0: और
1: और
0: जी
1: सामी लामी फी, ये बुनाई और कढ़ाई का एक अद्भुत संयोजन है जिसमें जानवरों पारंपरिक प्रतीकों को उकेरा जाता है।
0: जी और कभी से मणिपुर में प्रतिष्ठा और योद्धाओं का प्रतीक माना जाता था। पारंपरिक रूप से इन साड़ियों को सूती, कॉटन और रेशम जो होती है, एरी और मलबरी धागों से हाथों द्वारा बुना जाता है। इन्हें रंगने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पेड़ों की छालों का उपयोग किया जाता था।
1: हाँ, तो इस बार अगर जब भी आप मणिपुर जाएं तो, या फिर आपके कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार अगर जाते हो, तो वहाँ से एक साड़ी ज़रूर मंगवाइएगा।
0: बिल्कुल
1: उनसे कहिएगा कि हमारे लिए एक मणिपुरी साड़ी लेकर आई है। चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं
0: हाँ
1: और उसके
0: बिल्कुल
1: बाद आगे बढ़ेंगे।

0: हमारा ये जो सेगमेंट है ना कि शब्द हमारा और विचार आपके, तो इसमें आज का जो शब्द है वो फिजूल खर्ची है, तो इस बारे में हमारे साथियों के, हमारे सखियों के क्या विचार हैं वो जान लेते हैं। हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि फिजूल खर्ची मतलब समय या संसाधनों का बिना ठोस आवश्यकता खर्च में लापरवाही बरतना। ये एक ऐसी आदत है कि व्यक्ति अपनी आय के मुकाबले ज़्यादा खर्च करके सिर्फ दिखावे के लिए पैसे लुटाता रहता है, अंत में कर्ज में डूब जाता है और तब उनकी आँखें खुल है तब बड़ी देर हो चुकी होती है। खर्च करने के बारे में एक गुजराती मुहावरा है कि पछेड़ी प्रमाणे सोड़ ताड़वी। इसका मतलब यह होता है कि चादर के हिसाब से पैर फैलाना। खर्च के साथ बचत की आदत भी डालें, वो आपके बुढ़ापे में एक लाठी जैसा सहारा बन सकती है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची, भाई इस रोग से प्रायः सभी ग्रसित होते हैं और ऐसा इसलिए है कि अपने वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी ही नहीं है और एक पर एक फ्री का लोभ भी समाया हुआ है, फिर मानव की प्रवृत्ति भी संग्रह करने की है। इस दृष्टिकोण से फिजूल खर्ची होना स्वाभाविक ही है। अक्सर ऐसा होता है ना मंजू जी, जब हम कुछ लेने जाते हैं, जो हम लेने जाते हैं अगर उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, कम दाम का मिल रहा होता है या एक पर एक फ्री होता है, तो हम उसको जरूर उठा लेते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो चाहे ना हो।
0: हाँ बिल्कुल, ये समझ करके कि ये तो फ्री मिल रहा है हमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका कुछ तो हमें भुगतान करना ही होता है जो कि हमें पता नहीं चलता है।
1: जी,
0: हमारी एक साथी ये लिख रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग और आकर्षक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना, बजट न बनाने और बचत के महत्व को न समझने की आदत, गलत वित्तीय आदतें जैसे फिजूल खर्ची, बिना बजट के खर्च करना और बचत न करना जो कंगाली की शुरुआत कर सकती है। आय से अधिक खर्च करने पर व्यक्ति कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है। मानसिक तनाव, वित्तीय असुरक्षा के कारण परिवार में कलह और मानसिक अशांति बढ़ती है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। आज की दिखावे की दुनिया में लोग अक्सर आवश्यकता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। हमें अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और अनावश्यक वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए। सादगीपूर्ण जीवन और मितव्यता हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची छोड़कर बचत और समझदारी की आदत अपनाना ही जीवन की सच्ची समृद्धि है।
0: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि फिजूल खर्ची को रोकने का अर्थ कंजूसी करना नहीं बल्कि मितव्यता यानी कि सोच समझकर खर्च करना है, इस आदत को अपनाना है। इसके लिए व्यक्ति को किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि यह उसकी आवश्यकता है या केवल एक इच्छा। बजट बनाकर जीने और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने से ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: और एक साथी ने ये भी लिखा है कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। तो इन सब आदतों से, इन बातों से हमें बचना है और फिलहाल एक गीत
1: गीत
0: सुनना
1: सुनना है।
0: है।

0: गीत एक चटपटा सा गाना हमने सुना और अब ज्वार की कुछ चटपटी रेसिपीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि हमारे प्रांत में ज्वार नहीं होता है। अच्छा। महाराष्ट्र जाने पर वहाँ ये रोटी खाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है और वहीं के लोगों से बनाना भी हमने सीखी है और अब तो वैसे पैकेट में सारी चीज़ें मिल रही है, आटा भी मिल जाता है। ज्वार की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब मैं थोड़े ढंग से उसे बना भी लेती हूँ, क्योंकि उसे बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, वो टूट जाती है किनारों से, इसलिए तो उसको बनाना भी एक टेक्निक होती है और हर किसी के हाथों में ये हुनर नहीं होता है तो हमें भी सीखना चाहिए। लिखती है ये कि मैं रात के खाने में ज़्यादा ज्वार की रोटी खाती हूँ, किसी भी तरह की तीखी चटनी और सब्जी के साथ खाई जाती है, पर मुझे ये ठेचा और गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठेचा एक तरह का महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला एक तरह की चटनी होती है, मसाला भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी लहसुन होती है, थोड़ा अदरक हरी मिर्ची होती है और फिर उन सबको थोड़ा भून लिया जाता है, थोड़ा मूंगफली के दाने डाल करके और फिर उसे पीस लिया जाता है नमक डाल करके और थोड़ा दरदरा सा इसे रखा जाता है, उसे ठेचा कहते हैं।
1: बिल्कुल एकदम मुंह में पानी आ जाए ऐसे रेसिपी बता दी आपने।
0: बिल्कुल पारंपरिक जो रेसिपी होती है, व्यंजन जो होते हैं ना, उन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, हाथ से कूटना पीसना और इस तरह के कुछ अच्छी तरह से उन्हें सेकना, चूल्हे के ऊपर पहले तो सेका जाता था, तो ये जो प्रोसेस होते थे इसमें उन चीजों का एक स्वाद वो निकल जाता था।
1: खाली मिक्सी में आप पीस तो वो स्वाद नहीं आता जो हाथ से पीस के आता है।
0: बिल्कुल अब और भी व्यंजन।
1: हाँ जी बिल्कुल, एक हमारे जो श्रोता इन्होंने लिखकर भेजा है ज्वार आटे की राब।
0: अच्छा,
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच ज्वार का आटा, 4 चम्मच घी, 1/2 चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच काजू बादाम की कतरन, 4 चम्मच गुड़, 1/2 चम्मच ड्राई जो अदरक का पाउडर होता है वो, और 2 कप गर्म पानी सजावट के लिए ड्राई फ्रूट्स की कतरन। अब सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें अजवाइन डालकर 1 मिनट के लिए इसको भून लीजिए अच्छे से, और बाद में ज्वार का आटा डालकर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। बाद में अदरक का पाउडर, गुड़ और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लीजिए। बाद में काजू बादाम की कतरने डालकर वापस से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। तो अभी हमारी जो टेस्टी गर्मा गर्म जो ज्वार आटे की राब है वो बनकर तैयार है, इसको ड्राई फ्रूट से जा सकते हैं।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर, प्रोटीन और खनिजों से

0: भरपूर होता है। इसके सेवन से वजन नियंत्रण और पाचन क्रिया बेहतर बन रहती है। ज्वार के आटे और साबुत ज्वार से कई स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं। अब पहले ज्वार की रोटी या भाकरी के बारे में इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में गर्म पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर नरम आटा गूंथ लें और हाथ या बेलन की मदद से गोल बेलकर धीमी आँच पर इसे सेकें, तो इस तरह से तो ये रोटी बन जाएगी। हालांकि इन्होंने जितनी आसानी से लिखा है उतनी आसानी से वो बनती नहीं
1: बनती नहीं।
0: ज्वार का चीला किस तरह, पुड़ला जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से बनाए कि ज्वार के आटे में दही, पानी, कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, टमाटर, गाजर और इसके अलावा नमक और हरी मिर्च मिलाकर एक घोल बना ले इसका।
1: अच्छा।
0: वो तैयार कर ले और तवे पर तेल लगाकर वो घोल जो है वो फैलाते हैं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेके। अचार या दही के साथ इसको खा सकते हैं, चाय या कॉफी के साथ भी खाया जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा आसानी से बनाया जा सकता है। इसी के साथ इन्होंने ज्वार का उपमा किस तरह से बनाए वो भी लिखा है कि रात भर भीगी हुई साबुत ज्वार को कुकर में उबाल ले, पैन में राई, करी पत्ता, प्याज और अपनी मनपसंद सब्जियां भुने और इसमें उबली हुई ज्वार और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकाएं। इस तरह से ज्वार का उपमा तैयार होता है।
1: वाह, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। और साथ ही हम बात कर रहे थे ज्वार की जो खस्ता कचौड़ी होती है उसके लिए एक कप गेहूं का आटा चाहिए, बेसन भी उसमें आप ले सकते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन ये तो उन्होंने गेहूं का बताया हुआ है, हमें तो चाहिए ज्वार का।
0: हाँ।
1: तो हम बात करते हैं ज्वार भाकरी की। तो दो कप ज्वार का आटा, दो टेबल स्पून इसमें चावल का आटा चाहिए, दो टेबल स्पून तेल और एक टी स्पून अजवाइन, आधा टी स्पून हल्दी का पाउडर, एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा कप बारीक कटा हुआ धनिया और एक चौथाई कप बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, स्वाद के अनुसार नमक और भाकरी सेकने के लिए घी। सभी सामग्री को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए और पानी की सहायता से उसका सख्त आटा आप गूंद सकते हैं। तो मतलब पतला नहीं रखना है, पतला तो वो अलग हो जाएगा, फिर वो वैसा नहीं बनेगा। तो आटे को बराबर नींबू के आकार की छोटी छोटी सी लोइयों में आप बांट लीजिए। लोई को बेल कर भाकरी बना लीजिए। तवे को गर्म करके और धीमी आंच पर भाकरी को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सेक लीजिए। फिर घी डालकर लकड़ी के प्रेस से मतलब उस तरह से दबाते हुए अच्छे तरीके से उसको दोनों तरफ से धीमी आंच पर तब तक सेकिए जब तक वो कुरकुरी ना हो जाए। फिर अपनी पसंद की सब्जी या चटनी के साथ आप खा सकते हैं।
0: बिल्कुल। एक साथी हमारी लिख रही है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके सेवन से ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। और ये लिखती है आगे कि मध्य प्रदेश और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ ज्वार की पारंपरिक रोटी, स्वादिष्ट ज्वार की राब, ज्वार का ढोकला या मुठिया और कुरकुरी ज्वार की पूरी आसानी से बना सकते हैं। और ज्वार के कुछ व्यंजनों के बारे में लिखा है, इन्होंने रोटी के बारे में लिखा है जो कि हम बता चुके हैं इसलिए, और चिले के बारे में भी लिखा है और उसके बारे में भी हम बता चुके हैं तो ये तो हम नहीं बता रहे। इसके आगे इन्होंने ज्वार की स्टफ्ड बाटी के बारे में लिखा है तो वो हम बता देते हैं। इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में अजवाइन, तिल और कसूरी मेथी मिलाकर आटा गूंथ ले, इसके अंदर आलू और मटर का मसालेदार मिश्रण भरे और बाटी की तरह इसको सेक लें या कम तेल में कचौड़ी की तरह तल लें और यह स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन संगम है। इसके बाद इन्होंने ज्वार का उपमा बनाने के बारे में लिखा है कि साबुत ज्वार को कुछ घंटे पानी में भिगोकर उबाल लें और अब राई, करी पत्ता और अपनी मनपसंद की सब्जियों से तड़का लगाएं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और राब के बारे में इन्होंने लिखा है जो भी, जिसकी रेसिपी भी हम बता चुके हैं।
1: बिल्कुल। एक छोटा सा ज्वार, ये ज्वार का डोसा है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कप ज्वार का आटा, तीन बारीक कटा हुआ प्याज, तीन से चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, एक मुट्ठी कटा हुआ ताज़ा धनिया, तीन कप पानी और स्वाद के अनुसार नमक, दो चम्मच डोसा सेकने के लिए तेल चाहिए। अब एक बाउल में ज्वार, जो ज्वार होता है उसका आटा लीजिए, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, नमक और पानी डाल लीजिए। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाकर उसका पतला घोल तैयार करें। तवा गर्म करें और हल्का सा तेल लगा दीजिए उसको। फिर तवे पर घोल को डालकर गोल गोल घुमाते हुए फैलाएं जैसे कि आप डोसा बनाते हैं और धीमी आंच पर डोसे को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लीजिए। फिर इसमें आप कुछ भर भी सकते हैं, आलू का मसाला या आप ऐसे भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल। जो लोग रसोई घर में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि किस चीज से किस तरह की चीजें, और वो विभिन्न तरह के वो प्रयोग भी करते रहते हैं कि अरे इससे हो सकता है कि ये चीज अच्छी बन जाए, वो चीज अच्छी बन जाए, और इस तरह से बना के वो कुछ अलग अलग प्रयोग करके भी बना सकते हैं। हमारे एक साथी ने ज्वार के आटे का कप केक बनाने की रेसिपी भी हमें लिख के भेजी है, लेकिन अभी तो हम समय नहीं है कि उसे पढ़ पाएंगे। तो अगर हमारे कोई साथी बनाना चाहते हैं तो इस फेसबुक पेज से आप पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं।
1: बना के देखिए।
0: एक गीत हम यहाँ सुन लेते हैं।

0: आरती देखो, जब हमारी पसंद की कोई रेसिपी बनती है ना, जो हमें बड़ी पसंद हो, स्वादिष्ट हो, तो हम भी तो अपने मन में कुछ सपने सजा करके बैठ जाते हैं कि आज
1: कि हम इसको किसके साथ खाएंगे।
0: बिल्कुल, इस तरह के सपने सजाए जाते हैं। खैर, हम अपनी सभी सखियों सखाओं के लिए यही दुआ मांगते हैं हमेशा कि आप बहुत अच्छे सपने सजाएं और आपके सपने पूरे भी हों।
1: बिल्कुल, स्वस्थ रहें।
0: हाँ, स्वस्थ रहें। इसी के साथ कार्यक्रम अब समाप्त करने की बारी है, तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि मुकेश हम सबके दिलों की धड़कन हैं। हम खुश हों या उदास हों, जिंदगी का कोई भी पहलू चल रहा हो, मुकेश के गाने हमारी जिंदगी में एक साथ चलते हैं और न जाने कितनी पीढ़ियों ने मुकेश की आवाज़ के साथ अपनी जिंदगी का सफ़र तय किया है। आज हम मुकेश की याद को नमन करते हुए एक ख़ास प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस ख़ास प्रोग्राम में दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, तो उनका तारुफ कराने से पहले उनकी आवाज़ सुनिए।
1: होट

0: बहती है,
1: जिस देश में गंगा बहती है,
0: जिस देश में गंगा बहती है।
2: क्या बात है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में मुकेश की आवाज गूंजती है। तो स्वागत करते हैं जाने माने गायक मुख्तार शाह का।
1: नमस्कार यूनुस भाई, और सभी सुनने वालों को भी आदाब।
2: और मुख्तार भाई के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद मिश्र, जो मुकेश की आवाज हैं और बहुत प्यारे इंसान। बहुत स्वागत।
3: नमस्कार यूनुस भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
2: मुख्तार और गोविंद जी, आप दोनों सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मुकेश कहाँ से शुरू होते हैं?
1: जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं जब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता था यूनुस भाई, तब वो हमेशा ऐसे गाने का शौक तो कुदरती तौर से था, तो गाना ऐसे ही गाया करते थे। टीचर कभी बोलते थे तो ऐसे कुछ भी रैंडम गाते थे, लेकिन वो मैं मुकेश जी के गाने समहाउ मुझे बहुत पसंद थे और वही मैं गाया करता था। और जब मैं हाई स्कूल में आया तब वो कभी कभी फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुआ करते थे उन दिनों, मैं पल दो पल का शायर हूँ।
2: वाह वाह।
1: तो वो गाना मैं अक्सर गाया करता था जब भी ऐसा टाइम पास के तौर पे स्कूल के अंदर कोई वो पीरियड अगर फ्री है या कोई फंक्शन में गेस्ट नहीं आए हैं तो उनको टाइम पास करने के लिए किसी को बुलाना है तो मुझे बुलाकर वो गाना गाने बोलते थे, तो मैं यही गाता था। तो मेरे जो दोस्त थे तो मुझे मुकेश मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे।
2: वाह वाह।
1: इस तरह से मेरा जहन भी मुकेश जी की आवाज़ की तरफ ज्यादा।
2: ये किस शहर की बात है?
1: अहमदाबाद की, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी तो पैदाइश वहीं की है।
2: तो अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए आपका जो झुकाव है वो मुकेश के गानों की तरफ हुआ।
1: जी,
2: अब गोविंद की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ?
3: जी मैं तो हमेशा दूसरे सिंगर्स के ही गाने गाता था, लेकिन क्या है कि कुछ जो जानकार लोग थे संगीत के और जहाँ पे मैं सीखता था, बेसिकली इलाहाबाद जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, अब वो प्रयागराज हो गया है, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप मुकेश को ट्राई कीजिए, आपकी वॉइस जो है थोड़ा सा ऐसा सिमिलर आता है। तो मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे सुनना शुरू किया और मुझे याद है एक बार कंपटीशन में मुझे गाने का मौका मिला, तो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, वो गाने का मौका मिला।
2: क्या बात है।
3: और वो गाने के साथ वो फर्स्ट प्राइज जब मुझे मिला तब थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ा और उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियस होता गया।
2: क्या बात है। तो वही गाना सुनाइए फिर।

0: और को चाहोगी तो मुश्किल होगी।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक और बात गोविंद, के इलाहाबाद शहर में पढ़ रहे थे और कंपटीशन वगैरह की तो बातें हुई, पढ़ क्या रहे थे या नहीं
0: जी,
1: पढ़ रहे थे?
0: बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ।
1: हो, ये इंजीनियरिंग और गायकी
0: दोनों अलग अलग हैं। अभी म्यूजिक का शौक था और 4 साल क्लासिकल ट्रेनिंग भी ली मैंने प्रयागराज संघ समिति से, और फैमिली में ऐसा कोई म्यूजिक में था नहीं, बट मेरा झुकाव थोड़ा उधर था तो इस
1: बगावत
0: प्रोफेशन को
1: करनी
0: मैंने
1: पड़ी कि अब इंजीनियरिंग नहीं करेंगे।
0: चुना। कुछ सालों तक तो मुंबई में आने के बाद तो घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं शोज करता हूँ। मैंने हमेशा झूठी बोला कि मैं जॉब करता हूँ,
1: अच्छा, ये भी
0: क्योंकि
1: हुआ है।
0: हाँ गांव में जनरली से मम्मी पापा को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हमेशा मंथली जो भेजना भेज दिया। उसके बाद उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो। कितनी सैलरी है, कहाँ का जॉब है, तो बस वो चलता रहा धीरे धीरे। जब ये फेसबुक और इंस्टा में और सारे सोशल मीडिया यूट्यूब में वीडियोज आने लगे तब थोड़ा हाईलाइट मैं हुआ, तब मैंने बताया कि भाई मैं शोज करता हूँ।
1: मतलब इंजीनियर नहीं है, सिंगर
0: नहीं जी।
1: है। मुख्तार भाई, आपने क्या पढ़ाई की है भाई?
2: मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद फिर LLB किया।
1: अरे
2: क्या बात है।
1: बाप रे बाप,
2: हाँ,
1: ये क्या मामला
2: और
1: है।
2: मैं मतलब मैं ऑफिशियली वैसे मेरा तो एनरोलमेंट है एज ए लॉयर। मैं जब पढ़ाई करता तभी मेरा दिल था बहुत यूनुस भाई के LLB करूँगा और वकील बनूँगा,
1: जी
2: तो वो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। थोड़ा सा गाने का सफ़र शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम में,
1: हाँ,
2: और फिर मैं जब एडवोकेट हुआ तब मैंने 2 साल म्यूजिक छोड़ के वकालत भी की फुल टाइम।
1: ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है
0: सच में सच
1: कि
0: में।
1: कोर्टरूम में आप जो है वो जिरह कर रहे हैं, तो जिरह की बजाय गाना ज्यादा अच्छा लगता
2: लेकिन शायद ऐसा था, डेस्टिनी बोलते हैं ना,
1: जी
2: कि
1: जी
2: तो मैंने शुरुआत की क्राइम साइड, मेरा लीगल प्रैक्टिस है
1: हाँ
2: आज भी,
1: हाँ
2: मतलब मेरा एनरोलमेंट है।
1: जी
2: और तो लेकिन वो जहन से कलाकार था तो क्राइम की प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा मन बहुत सेट हुआ नहीं, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा उससे दूर होता गया। और कुछ हालात भी ऐसे हुए कि मुझे ऐसा चूज़ करना पड़ा कि या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, तो
1: हाँ
2: ऑफ कोर्स म्यूज़िक मेरा पैशन था तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा।
1: क्या बात है। अच्छा, तमाम शहरों में बल्कि दुनिया भर में आप मुकेश को गाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको कई बार गाने पड़ते हैं क्योंकि
2: हाँ
1: वो पॉपुलर गाने हैं,
2: जी जी
1: पर मैं यहां चाहता हूं कि अपने मन का कुछ सुनाइए जो आपको कम गाने का मौका मिले।
2: अमूमन शोज में नहीं रखे जाते ऐसे बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत गाने, जैसे अगर मैं बताऊं तो सारंगा तेरी याद
1: क्या
2: में,
1: बात है, क्या बात
2: ये
1: है, सरदार
2: मतलब
1: मलिक साहब का संगीत है
2: जी
1: ये।
2: जी तो ये गाने अमूमन से कम होते हैं, जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है,
1: वाह वाह
2: तो
1: वाह।
2: ऐसे कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अमूमन कम गाने का मौका आता
1: एक
2: है।
1: गाना मुझे याद आ रहा है, पुकारो मुझे नाम लेकर
2: वाह
1: पुकारो,
2: हाँ क्या बात है, वो भी डांसिंग का ही म्यूजिक है
1: ये
2: ना,
1: डांसिंग का म्यूजिक
2: तो दो लाइनें हो।
1: जरूर।

0: अब आप लोगों से एक बहुत ही जज्बाती सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि अगर कभी आपकी मुकेश से मुलाकात होती तो क्या कहते आप?
1: ये इमेजिन करना ही एक अपने आप में थ्रिल है कि कभी मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली के अपने जिंदगी के, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हो गया।
0: जी जी,
1: लेकिन यस, कभी अगर मौका मिलता तो शायद उस वक्त तो हम स्पीचलेस हो जाते,
0: बिल्कुल
1: उनसे क्या कहें कि आप बहुत अच्छा गाते हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, क्या कहें। तो मतलब वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही मुकेश जी की आवाज़ और उनकी पर्सनालिटी एक हमारे लिए आइडियोलॉजी की तरह है।
0: बिल्कुल। गोविंद आप बताइए।
2: मैं तो मुख्तार भाई बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलता उस टाइम पे अगर वो मिलते तो, क्योंकि जब भी हम गाते हैं उनको या सुनते हैं तो ये सीरियस बात है कि आँख बंद करके जब भी उनको सुनते हैं तो मैं खाली एक ही चीज इमेजिन करता हूँ कि कैसे गाया होगा। इतने सरल स्वभाव के आदमी,
0: बिल्कुल
2: एकदम एकदम सीधा सीधा गाना, और एकदम ना कोई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा स्ट्रेट गा के एकदम दिल पे उतर जाना। वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता, उठता नहीं उनको।
0: अच्छा, मुकेश ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं और कुछ तो गैर फिल्मी है, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे?
1: जिन

0: क्या प्यारा भजन, क्या बात है। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मुकेश जी को रामचरितमानस जो है उससे बहुत लगाव था और उन्होंने पूरी रामचरित अपनी आवाज में रिकॉर्ड की थी। और जो फिल्म म्यूजिक के कदरदान हैं और जो मुकेश के भक्त हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़े तोहफे की तरह है, एक बहुत जरूरी एक चीज है जो संग्रह में रखा जाना चाहिए। मुकेश जी को जब हम सुनते हैं तो कई बार ये एक चीज उभर के आती है कि वो सैड सॉन्ग्स के बादशाह हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ये बात उनको सिर्फ सैड सॉन्ग्स तक महदूद करना या सैड सॉन्ग्स के बादशाह कहना सही है? मुख्तार भाई,
1: मैंने जैसा उनका इंटरव्यू में उनके जबान से ये सुना है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे 10 ऐसे लाइट सॉन्ग दिए जाएं और एक अगर मुझे इमोशनल या सैड सॉन्ग दिया जाए तो मैं सैड सॉन्ग गाना ज़्यादा पसंद करूँगा। कलाकार जो होता है, मेरा अमूमन मानना है कि हमेशा वो दिल से जुड़ा होता है।
0: बिल्कुल।
1: और जो इंसान दिल से जुड़ा होता है उसको हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स उनसे बहुत लगाव होता है। और इसीलिए सारे कलाकारों का मैंने देखा है ज़्यादातर वो लोगों को सेंटिमेंटल या इमोशनल और सैड सॉन्ग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि जज्बाती होते हैं कलाकार, इसलिए जो सैड सॉन्ग्स हैं उनसे लगाव होता है। मुकेश जी को खास तौर पर सैड सॉन्ग से जोड़कर देखा जाता है। गोविंद, आप ये मानते हैं?
2: यही इंटरव्यू, बिल्कुल यही इंटरव्यू मैंने भी सुना था मुकेश जी का। यही था कि 10 अगर रोमांटिक सॉन्ग मुझे दिया जाए और एक सैड नंबर दिया जाए तो मैं सैड को ही प्रेफर करूंगा।
1: लेकिन लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी ने काफी सारे रोमांटिक गाने गाए हैं। और मैं तो इनफैक्ट बहुत मरतबा जब ऐसा सुनता हूँ कि जो ऑडियंस होता है कभी बोलता है कि अरे यार मुकेश जी का प्रोग्राम है तो फिर रोने वाले गाने होंगे, तो ये बातें सुन सुनकर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जिसका टाइटल रोमांटिक मुकेश।
0: क्या
1: तो मतलब 3 घंटे सारे गाने रोमांटिक और मुकेश जी के गाए हुए, तो लोगों को ऐसा होता है कि अच्छा इनके तो इतने सारे गाने रोमांटिक भी हैं।
0: ये बहुत जरूरी बात है। तो एक रोमांटिक गाना आप लोग दोनों मिलकर
2: चा

0: था।
1: वैसे मुझे तो गाना वैसे वापस मुझे भी मनोज कुमार जी वाला ही याद आया था, तौबे मतवाली चाल, लेकिन मैं सोचा मनोज कुमार जी का ज्यादा वो हो जाएगा तो राज कपूर जी का गाना
0: क्या बात है।
1: ऐसा।

0: रोमांटिक गानों की बात हो रही है और अभी मुख्तार भाई आपने कहा कि मनोज कुमार के ऊपर और राज कपूर के ऊपर मुकेश की आवाज तो इस गाने को चुना जाए, किन हीरोज के ऊपर राज कपूर को छोड़कर, क्योंकि वो तो मुकेश राज कपूर की आवाज तो थे ही, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुकेश की आवाज? ये सवाल गोविंद आपके पास भी आने वाला है।
1: अब मेरा मानना है कि अगर राज कपूर मनोज कुमार जी के बाद, मुझे पर्सनली फिरोज खान के ऊपर उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वाह,
0: मुझे एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया है।
1: अच्छा,
0: लेकिन देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि नहीं।
1: और वैसे तो सुनील दत्त जी पर भी हैं उनके गाने, शशि कपूर जी पर काफी सारे गाने, जितेंद्र पर बहुत सारे गाने।
0: हाँ।
1: तो लेकिन मुझे पर्सनली मेरा मानना फिरोज खान में मुझे ज्यादा उनकी आवाज अच्छी।
0: तो कौन सा गाना चुन रहे हो आप
1: जो

0: क्या बात है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत
1: यस
0: इंदीवर का लिखा हुआ ये
1: इंदिवर लिखी
0: गाना
1: है, करेक्ट,
0: सफर फिल्म से। और विविध भारती पर हम यही बात कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही
1: वही
0: बात
1: बात
0: नहीं है। हम अपने
1: करेक्ट।
0: लिसनर्स की पसंद का बहुत खास ख्याल रखते हैं और इसीलिए आज मुकेश जी को नमन करते हुए हमने आप दोनों को बुलाया है। तो गोविंद,
1: जी,
0: अब वही सवाल आपके पास आ रहा है।
1: शशि कपूर जी के ऊपर बहुत सारे फिल्म आए गए, उनके गाने,
0: वाह वाह वाह।
1: जैसे फिल्म कभी कभी का,
0: हाँ

0: देखने आते हैं। और यादगार में अगर मैं कहूँ तो मुझे हॉलैंड, नेदरलैंड एक ऐसी जगह लगती है कि जहाँ पर मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा है कि रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी सारे प्लेबैक सिंगर्स में सबसे ज़्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन नेदरलैंड और सूरीनाम, क्योंकि ज़्यादातर नेदरलैंड से लोग जो हैं सूरीनाम से माइग्रेट होकर आए हैं, ये एक जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ रफ़ी साहब से कुछ ज़्यादा मुकेश जी को लोग पसंद करते।
1: क्या बात है,
0: ये कि देश, इसलिए मुझे वो देश बहुत अच्छा लगता है।
1: वाह गोविंद, जब आप गाते हैं तो फरमाइशें किस तरह के गानों की ज्यादा आती
2: है? सैड नंबर की ज्यादा आती हैं।
1: और उसमें भी कोई खास गाना जिसको आपको तकरीबन हर शो में गाना पड़ता है?
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: अच्छा,
2: इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है।
1: हाँ, बहुत ही जज्बाती गाना है।
2: हाँ, सारंगा तेरी याद में, सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये सब बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है।
1: सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये गाना सुनते हैं।
2: सजन

0: कौन होगा जिसको इस फिल्म से प्यार ना होगा। तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है?
1: वो गाने तो उस फिल्म के सारे ही अच्छे थे
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो दूसरे दो गाने जो बहुत पॉपुलर हैं, सज्जन रे झूठ मत बोलो और दुनिया बनाने वाले, वो गाने भी इक्वली इतने ही अच्छे और मुझे पसंद है।
0: अच्छा, तो दुनिया बनाने वाले सुनते हैं आपसे।

0: जब आप लोग गाते हैं तो बिल्कुल यूं लगता है जैसे मुकेश जी हमारे सामने मौजूद हैं और गा रहे हैं। अपने गले का किस तरह से ख्याल रखते हैं आप लोग, बारी बारी से बताइए। पहले मुख्तार।
1: बिल्कुल, आप ये सवाल मुझसे करते तो मैं कहता पहले इनसे पूछिए।
2: अब पर्टिकुलरली यूनुस भाई, थोड़ा सा गले का ख्याल रखने में एक तो बात यही होती है कि थोड़ा सा अपने वॉइस के लिए जो भी मैं तो बाकायदा म्यूजिक सीखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा उटपटांग आता है वैसे थोड़ा सा रियाज करना सुबह में, वो थोड़ा सा करते हैं। एक गले के लिए खास सबसे पहला वही ज़रूरी होता है, और दूसरा ये होता है कि शो से 3-4 घंटा पहले तक कोशिश करते हैं और ख्याल रखते हैं कि कुछ फ्राइड कुछ नहीं खा लें या खट्टा कुछ ऐसा नहीं खा लें, और ठंडे का परहेज तो हमेशा रहता है थोड़ा।
0: गोविंद, आप
1: आइसक्रीम वगैरह तब चलता है जब 3-4 दिन का गैप हो, तब ऐसा लगता है कि भाई अभी गैप है, खा लो। हाँ। थोड़ा सा कर सकते, थोड़ा फ्राइड चीज कुछ हुआ। हाँ। क्योंकि समोसा वोसा मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा।
1: तो मैं देखता हूँ कि 3-4 दिन का गैप है तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता। और कोशिश करता हूँ कि नींद प्रॉपर लूँ जितना हो सके, 7-8 घंटे की नींद लेता हूँ। और सुबह उठना, जैसा मुख्तार भाई ने बोला कि थोड़ा सरगम पे तो लगता ही हूँ, मतलब नोट्स पकड़ के, एक एक नोट सा नींद आ पाए सरगम, वो एक एक नोट पे रहता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, इलाहाबादी व्यक्ति को

0: दुनिया में बाकी जगहों के समोसे पसंद आते हैं?
1: नहीं आते, लेकिन अब वो टेस्ट ऐसा करता हूँ, चलो इलाहाबाद में ही खा रहा हूँ।
0: अच्छा। खान पान का बाकायदा परहेज होता है?
2: थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही रहता।
0: अच्छा ये बताइए कि मुकेश की बहुत सारी गजलें हैं और उनमें से कुछ गजलें आपके दिल के बहुत करीब हैं, ये मुझे पता है, तो किन गजलों का?
2: खूबसूरत उन्होंने जो गैर फिल्मी ये गजल वगैरह उन्होंने गाई है
0: जी।
2: लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर मुझे जो बहुत पसंद है वो है तेरे

0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार एल्बम रहा है जिसमें बहुत कमाल की गजलें हैं, हमसे भागा ना करो गजालों की तरह, मेरे महबूब नहीं ये नहीं। मुकेश जी ने गैर फिल्मी एल्बम बहुत सारे किए और वो दौर ऐसा था जब प्लेबैक सिंगर्स अपनी पसंद के गानों के लिए गैर फिल्मी एल्बम्स करते थे। लता जी ने किए, आशा जी ने किए, मन्ना डे ने बहुत सारे किए, रफी साहब की भी गजलें मौजूद हैं। तो अच्छा, गोविंद मुकेश के ही गाने आप सिर्फ सुनते हैं या जब सुनने की बारी आती है तो?
1: मैं सच बोलूं तो ऑन एयर आज एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जब मेरा शो होता है, जब रिहर्सल होता है, रिहर्सल के एक दिन पहले ही मैं मुकेश जी को एकदम सीरियस होकर सुनता हूं।
0: अच्छा,
1: नहीं तो मेरे फेवरेट हमेशा रफी साहब रहे हैं। और
0: क्या बात है,
1: रफी साहब को मैं बहुत सुनता हूँ।
0: तो फिर अब मैं ये चाहता हूँ कि रफी साहब का एक गाना आप सुनें। ये तो अलग ही हो जाएगा मामला, है ना।

0: यार ये जो है ना ये अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया, मुझे आइडिया आ गया। अब मुख्तार भाई आपको भी रफी का गाना गाना पड़ेगा। ऐसा किसी ने किया नहीं होगा लेकिन यहाँ तो होगा ये।
1: सुहानी रात ढल चुकी।

0: क्या बात है, पहली बार आपसे हमने रफी साहब को सुना कि
1: मैंने भी,
0: अच्छा
1: मैंने भी
0: ये देखिए ये ऐसा सिर्फ आरती में ही पॉसिबल है, ऐसा शोज में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब अगर लोगों ने सुन लिया तो
2: हो सकता है कभी ऐसा कुछ फरमाइश आ जाए।
0: अच्छा, जब आप फुर्सत में होते हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुकेश के गाने सुन रहे हों, तो किन किन कलाकारों के गाने सुन रहे होते हैं?
2: मैं रफ़ी साहब सभी के फेवरेट रहे हैं, उनके गाने बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और ऑफ कोर्स मैं कभी किशोर कुमार जी के भी गाने कुछ मुझे पसंद हैं तो वो मैं सुनता हूँ अगर वक्त मिला तो।
0: गोविंद?
1: मैं गुलाम अली साहब को बहुत सुनता हूँ, खाली टाइम पे मैं गुलाम अली साहब को ही सिर्फ सुनता हूँ, बहुत मज़ा आता है उनकी हरकतों को, उनको सब एकदम ऐसा डूब जाता हूँ पूरी तरह से।
0: वहाँ हमने गजलों की बातें की तो यहाँ पर भी जो है, लेकिन अब ये कह के फंस गए गुरु
2: मैं सोच ही रहा था,
1: सोच के जो है
0: चुपके चुपके रात दिन
1: चुपके चुप

0: आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन।
1: एक पूरा दौर रहा है
0: ओ
1: गजलों
0: यस
1: का, जब
0: यस
1: गुलाम अली के कैसेट्स कौन होगा जिसके कलेक्शन में नहीं हुआ करते
0: हाँ
1: होंगे।
0: एग्जैक्टली
1: आप लोग बहुत शोज करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं अपने शोज के लिए। मुकेश की आवाज में अलग अलग गानों की अदायगी लाइव ऑडियंस के सामने, कितने दबाव और तनाव की बात होती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है।
0: तनाव तो रहता है जब ये, क्योंकि कमर्शियल प्रोग्राम्स करने रहते हैं जहां लोग एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं आपके साथ के गानों के, एक तो वॉइस के अंदर रिजेम्बलेंस और उसके बाद उनके उनको गाना, तो उसका टेंशन तो हमेशा रहता है। इतने सारे, मतलब इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं थाउजेंड्स में, लेकिन अभी भी गाने का, और स्पेशल जब पहला गाना गाने स्टेज पर जा रहे होते हैं तो दिल ऐसा अंदर से धड़क तो रहा ही होता
1: क्या
0: कि
1: बात
0: भाई
1: है।
0: लोग एक्सेप्ट कर लें, आवाज़ ठीक से निकल जाए, आवाज़ चल जाए,
1: हाँ
0: क्योंकि वो हमारा क्रिएशन तो है नहीं, हम किसी
1: हाँ

0: और का गाया हुआ गाना है और मुकेश जी की आवाज़ को उसको कॉपी करना है, तो वो
1: हाँ
0: थोड़ा सा अगर ऐसा सोचते अगर 5-10% भी अगर उसको जस्टिफाई कर सके तो, और मेरे ख्याल से उतना ही करते हैं जिसके बदौलत लोग इतना प्यार देते हैं।
1: आप 5-10% नहीं करते हैं, आप इसका उल्टा करते हैं, मतलब 99% 100% करते हैं। गोविंद, कितना टेंशन होता है शो से पहले?
2: टेंशन तो बहुत रहता है, और जैसा मुख्तार भाई ने बोला, पहले गाने के लिए सच में बहुत टेंशन रहता है,
1: हाँ
2: जिससे धक धक धक धक करता रहता है। और मैं तो ग्रीन रूम में हुआ, मेरा जब नंबर आने लगा, जैसे पहला गाना मेरा ही है, तो मुझे टेंशन पहले स्टार्ट हो जाता है, और
1: अच्छा।
2: मैं कर्टन के सामने खड़ा भगवान को बोलता रहता हूँ, बस आप संभाल लेना, आप स्टेज संभाल लेना, बस और कुछ नहीं।
1: अच्छा, इस टेंशन को ईज करने के लिए क्या तरीका है आप लोगों का? गहरी गहरी सांस लेना, क्या करते हैं? जैसे उन्होंने कहा, भगवान से कहते हैं भाई संभाल लेना
0: नहीं,
1: आज।
0: ये तो सबसे बड़ी बात ही है, टेंशन को ईज करने के लिए
1: ऊपर
0: आप
1: वाले पे छोड़ दो।
0: ऊपर वाले को, हाँ उसको तो रिक्वेस्ट करना ही रहता है कि भाई
1: हाँ
0: संभालना।
1: बिल्कुल। एक चीज, हाँ ये सवाल पहले आएगा कि मैंने आपको कई जगह गाते हुए देखा है कि आप लिरिक्स के साथ नहीं गाते,
0: जी
1: अमूमन आपको सब गाने याद हैं,
0: जी
1: ये कितनी चैलेंजिंग बात होती है? ऐसा नहीं लगता है कि कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया?
0: नहीं, क्या है कि बचपन से एक गाने का जो शौक रहा, तो पुराने दौर में जब हम छोटे थे, तो हम लोगों को पता है, हम फिल्म में जब जैसे देखने जाते तो स्टोरी भी पूरी याद होती थी,
1: बिल्कुल।
0: और अपने दोस्तों में कभी डिस्कस करते थे कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो वो गाने भी उसी वक्त से मुझे ये सारे गाने, इनसे इतना लगाव था, इतने दिल से जुड़े रहे इन गीतों के साथ, वो तब से याद हैं। तो वो आज तक ऐसे एक सिस्टम कुदरत ने अंदर इतनी मेहरबानी की है कि वो एक सेट रखा है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच कर भी नहीं जाता हूँ कि अच्छा इसका पहला अंतरा क्या है, सेकंड क्या है, वो स्टेज पे याद आते जाता है वो।
1: चलता चला जाता है। तो
0: हाँ
1: कभी मैंने आपको लिरिक्स के साथ गाते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने
0: जी
1: कहा कि ये बात जो है ये तो पूछनी जरूरी है कि कितने गानों का खजाना दिमाग में जमा
0: हाँ
1: कर रखा
0: और
1: है।
0: वो मैंने क्या है कि कभी रखा भी नहीं, रेफरेंस के लिए मैं कागज़ इसीलिए नहीं रखता हूँ, क्योंकि जिस दिन साइकोलॉजी एक बैक ऑफ द माइंड मैंने मैसेज दे दिया कि अब भाई एक रेफरेंस के लिए है, तो वो नज़र वहाँ जाएगी, वो कहते हैं ना कि अब जैसे बैंडेज खरीदते हो तो आपको चोट लगती है। तो खरीदना ही नहीं चाहिए
1: सच में।
0: बैंडेज।
1: गोविंद, कितने गाने याद रहते हैं और डायरी की जरूरत पड़ती है?
2: हाँ, कभी कभी पड़ती है, जैसे मुख्तार भाई ने बोला अभी कि थोड़ा रेफरेंस के लिए ना, वो दिमाग में मेरे बैठ गया है वो चीज़, कुछ लाइनों को देखना पड़ता है,
1: हाँ
2: मतलब बहुत बार गाया है लेकिन फिर भी वो देखना ही पड़ता है, होता है, लेकिन कुछ गाने बहुत याद हैं, कुछ गाने एकदम पूरे याद हैं, लेकिन कुछ गानों को जिनको मतलब अमूमन कभी नहीं गाया है या पहली दो बार गा रहा हूँ, तो 2-3 बार गाने के बाद तो वो याद ही हो जाता है,
1: अच्छा,
2: लेकिन फिर
1: इतने
2: भी
1: सालों से आप लोग शोज कर रहे हैं और एक तरह से शो जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रिहर्सल कितनी मायने रखती है? हर शो के पहले एक रिहर्सल होती है।
0: मैं अब इन दिनों अभी काफ़ी सारे मतलब रिहर्सल मैं स्किप करने लगा हूँ, बहुत नहीं जाता हूँ रिहर्सल में, लेकिन यस हाँ, कभी जैसे प्यारे भाई का अगर कोई प्रोग्राम है, या आनंद जी भाई के साथ कर रहे हैं, विजू भाई के साथ कर रहे हैं, तो वो रिहर्सल पर्टिकुलरली अटेंड करने जाता हूँ, क्योंकि एक थोड़ा सा लर्निंग लेसन्स रहते हैं वहाँ पर। और बाकी अब म्यूजिशियंस और वो सब सारे इतने नोन हैं इतने सालों से, तो अब वो एक सबको एक लिस्ट दे दो और थोड़ा सा स्केल फोन पे डिस्कस कर लो तो काम वैसे चल जाता है,
1: बिल्कुल,
0: अनलेस
1: बहुत ही
0: के कोई
1: बढ़िया।
0: ऐसा रेयर गाना गा रहे हो तो थोड़ा सा कभी कर देखना पड़ा।
1: गोविंद
0: एग्जैक्टली
1: आप बताइए।
2: नहीं, रिहर्सल तो ठीक है, जो अगर हम रेगुलर गाने गा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, क्योंकि
1: हाँ
2: सारे
1: हाँ
2: म्यूजिशियन भी वैसे ही हैं, और आज के टाइम पे चाहे सिंगर हो म्यूजिशियन हो, सब इतना मेहनती हैं, सब मेहनत करते हैं, सब अपना 100% स्टेज पर देते हैं,
0: एग्जैक्टली
2: चाहे वो
1: यस।
2: सिंगर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, साउंड हो, कोई भी हो, लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर कुछ अलग गाने मिल गए, कुछ कोरस वाले गाने मिल गए, तो रिहर्सल की ज़रूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल। मुख्तार भाई, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ मैंने आपको शो करते हुए देखा है,
0: जी
1: तो जैसे प्यारे भाई ही
0: जी जी
1: हैं या आनंद जी भाई हैं या और तमाम लोग हैं, मतलब
0: जी
1: सिंगर्स भी बहुत सारे, तमाम
0: जी
1: लोगों के साथ उनकी कुछ यादें, उनके साथ शो की यादें हमारे साथ बांटिए।
0: मैं मतलब मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में, जब छोटा था, गाना मैंने शुरू किया, अहमदाबाद में था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुदरत ऐसा मौका भी देगी कि ये लोगों के साथ मिलना होगा, या इन लोगों के साथ कोई स्टेज पे खड़े रहने का मौका भी मिलेगा। तो मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया। जैसा कि हम सुनते थे कि भाई ये जो लेजेंड्स होते हैं, तो जब इनके साथ काम करो तो इनके काम करने का तरीका, इनकी डिटेलिंग, इनका ऑब्जर्वेशन, वो देखकर ही पता चलता है कि इसीलिए ये लोग महान हैं। तो जैसे कि मैं बताऊं कि अगर प्यारे लाल जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था, तो सारे म्यूजिशियंस बजा रहे हैं, और जैसा मैं सुनता था तो वो मेरे साथ बात भी कर रहे थे, और वो जब जुम्मा चुम्मा दे दे वाला म्यूज़िक आगे का चल रहा था तो वो जैसे स्टॉप हुआ तो उन्होंने पर्टिकुलरली चार कीबोर्ड वाले थे उसमें से एक ही कीबोर्ड वाले को उन्होंने बोला कि आप वो बजाइए, आप क्या बजा रहे थे, और वही इंसान गलती कर रहा था वो जगह पर।
1: इतनी तो बारीकी से,
0: इतनी बारीकी से जो सुनना
1: जी,
0: ये
1: और प्यारे भाई के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो 20 वायलिन में से भी एक को पहचान लेंगे कि तुम गलत बजा रहे थे। तो ये तो कमाल की बात है। उनके साथ बहुत रिहर्सल्स, बहुत शोज किए हैं आपने, तो कोई एक गुरु मंत्र जो उन्होंने आपको दिया हो?
0: मुझे वो ऐसा कहते थे कि आपके थोड़े से जो लैंडिंग जहां आप नोट्स आपको करते हैं वो थोड़ा सस्टेन करना या उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, जो उन्होंने मुझे बताया था, तो वो एक उन्होंने मुझे बताया और वो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा उन्होंने मुझे बताया है तो लैंडिंग नोट्स को, जब गाना जहाँ से जो लाइन जहाँ ख़त्म होती है तो उसको जो सस्टेन करना, तो कोशिश करता हूँ वैसे ही करने की।
1: मुझे लगता है कि वो गाना जो आप कई बार प्यारे भाई के साथ स्टेज पर गा चुके हैं, वो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली,
2: हाँ, हाँ,
1: वो गाना सुनते हैं आपसे।

0: क्या बात है, इस गाने के बारे में जो एक ट्रिविया है वो भी बता दीजिए, द गुड द बैड द अगली।
1: वो जो म्यूजिक उन्होंने किया तो मैं, वो मुझे प्यारे भाई ने बताया कि हमने उसका बाकायदा पेड करके वो लिया हुआ है म्यूजिक, किराया हुआ नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कमाल है कि इतनी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म और उसका जो म्यूजिक है, वो जो थीम है, वहां से उन्होंने
1: जी
0: क्या शानदार तरीके से उसको गाने में बदला है, ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात है।
1: एग्जैक्टली यस।
0: तो ये गाना पूरा सुनते हैं रिकॉर्ड से।

0: गोविंद अब आपकी तरफ आते हैं, तमाम तरह के शोज किए हैं, तो को सिंगर्स के साथ कुछ दिलचस्प अनुभव, कभी ऐसा होता है कि लाइंस भूल जाते हैं लोग या ऐसा कुछ?
1: हाँ, एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी तो होता है। और काफ़ी सारे फीमेल सिंगर के साथ जब मैंने गाए तो कई लोग, कई फीमेल सिंगर्स ऐसी थी जिन्होंने कोई कोई गाने में लाइन भूल जाती थी, तो वो याद मुझे रहता था, तो मैं खाली उस इशारा करके मैं संभाल लूंगा, मैं गा लूंगा, मैं दो लाइन तीन लाइन आगे गा के फिर उनको सपोर्ट करता कि अभी तुम गाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये भी करना पड़ता है। सर आप भी ऐसा करते हैं?
2: नहीं, आमतौर से ऐसा कभी, यस ऑफ कोर्स, अगर को सिंगर अगर है, कहीं हमारी गलती हो गई तो शायद उसने संभाल लिया, उसकी गलती हुई तो हमने संभाल लिया, पब्लिक को नहीं पता चले एज लॉन्ग एज, तो वो तो कोशिश तो करनी पड़ती
1: है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया गाना हो जिसका रिहर्सल नहीं हुआ हो टाइम कम की वजह से, तो हमें फीमेल सिंगर को बोलना पड़ता है कि काउंटिंग करके मुझे बताना मेरा स्टार्ट कहाँ से होने वाला है।
0: वाह वाह,
1: तो बता के वो पहले खाली ऐसे टच कर देंगे तो हम शुरू हो जाते हैं।
0: पब्लिक को समझ नहीं आता,
1: पब्लिक को समझ नहीं आता था ऐसा। बस
0: एक चीज़ और बहुत ही ज़रूरी बात जो मुझे लगता है कि जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत काम की होगी, और वो ये है कि आप दोनों लोग स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अदाबाजी के साथ नहीं करते हैं कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नीचे झुक गए, तिरछे हो गए, टेढ़ा मुंह कर लिया, आप लोग बहुत सलीके से और बहुत नफासत के साथ गाते हैं।
2: तो ये मेरे ख्याल से हम जिनके गाने गाते हैं मुकेश साहब के, तो उनके गानों की डिमांड भी वही है कि अगर उनको उसी तरीके से गाना चाहिए जैसा हम गा रहे हैं। शायद अगर हो सकता किशोर कुमार जी के गाने गा रहे होते तो उसकी डिमांड वो होती कि उसके अंदर थोड़ी चंचल, थोड़ा सा उछल कूद, थोड़ा सा ऑडियंस में चले जाना, या वो वहाँ होता।
0: बिल्कुल गोविंद,
1: मैं तो मुकेश जी के वीडियोस जितने देखे हैं उसमें उन्होंने सब सीरियस होके गाए हैं,
0: वो तो हारमोनियम
1: लेके, लेकिन वो एंट्री कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, वो चीज मैंने मुख्तार भाई से सीखा है।
0: मैंने
1: काफी शोज इनके साथ किए हैं तो मैंने इनको सिर्फ नोटिस किया है कि ये कैसे एंट्री कर रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे गा रहे हैं, कितनी सादगी से गा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने ये बात पूछी,
2: इसीलिए आज मॉडेस्टी
1: नहीं, मैं बस वो चीज इनसे ही मैंने सीखा है। और सिंगिंग में भी बोलूं तो मुकेश जी को मैं सुनता हूं, लेकिन मुकेश जी को सुनने के बाद एक बार इनको जरूर सुन लेता हूं।
0: क्या बात है,
1: इन्होंने कैसे गाया।
0: अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग मिलकर कोई गाना गाएं, तय कर लीजिए कि वो कौन सा गाना होगा। मुखड़ा अंतरा, दूसरा अंतरा भी हम सुनना चाहेंगे, जितना अच्छा, आप गा सकते हैं। तो बताइए कि आप लोग कौन सा गाना चुन रहे हैं जिसमें एक शुरू करेगा, दूसरा उस गाने को आगे बढ़ाएगा, फिर अंतरे आएंगे।
2: यस, एक बहुत ही सच्चाई के पर लिखा हुआ जो गाना है, सज्जन रे झूठ मत बोलो।
0: क्या बात, शैलेंद्र जी का गाना, फिल्म का नाम तीसरी कसम, शंकर जयकिशन।
2: सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे,

0: क्या बात है, कितना शानदार माहौल आप लोगों ने बनाया, कितना अच्छा लगा। ये गाना भी ऐसा है जो एक जिंदगी का जरूरी सबक सिखाता है
1: जी।

0: पार्श्वगायक मुकेश की याद में आज हमने एक विशेष पेशकश आपके सामने रखी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। इनसे बात की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। मुकेश जी से जुड़ी बातें और यादें इतनी सारी हैं कि इस कार्यक्रम का अगला भाग भी हम लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 4 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को पेश किया जुबैर खान ने। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज पिटारा लाया था
0: आज के मेहमान।
1: आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे, करते थे और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

Listen up, yo. It's Valentine's Day. Groove.

प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छत ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्ष को 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345678 किबा 1912 रे जोगाजोग करंतु।

0: बोल आनंद कुमार, हरी हरी
1: हरी
0: बोलो, हरी बोलो, हरी बोलो।
2: नोना ओ जगु नोना आम हरिया आसिला ताकु टिके प्रसाद दियो।
0: अरे हरिया कौन है लागी रे तू आज आसिलुनी भागवत सुनिबा पई
3: कौन करबी नोना घर आसु आसु आम प्रकाश बाबू पुओटा जहा कला ना कौन आउ कहिबी
2: कौन कला कि हरि भाई
0: छाड़ो भाई से कथा आजिकालिका पिला तो अरे हरि ने ने ने ने ने प्रसाद टिके ने
3: आज्ञा नोना दियंतु
0: इरे निधिया सुनिलु सुनिलु सुनिलु
2: आज्ञा नोना
0: आम से खंताल साहि दासिया कुआडे गला गिरी
3: नोना सेईटा पूरा बाईया हे गलानी नकरिबा काम गुडा करूच
2: पिंडा तोले बोसीबा लोकटा सिंहासन लोभ कलानी
0: ओहो घोर कळी घोर कळी घोर कळी सुनो सुनो सुनो रात्र समय रे कोनसी कथा कुहंती नाही निधि काहे कि ना कांथो बाडर परा कान अछि
3: हां

0: गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 86 भाग।
1: एपिसोड नंबर 86। 86।

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहरी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षण भर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी।

आदौ मुख्य वार्ताः केंद्रीय सर्वकारः संसदि नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये सारगर्भां चर्चां विधातुम् अंगीकृतवान् तथापि विपक्षस्य श्रान्तं कोलाहलेन प्रावृत सत्रस्य तृतीयेपि दिने उभयोः सदनयोः कार्याचरणं स्थगितम् सोमवासरे संसद भवनं प्रति आंदोलनं कुर्वत्सु प्रदर्शनकारिषु आरक्षकैः कृतायाः अत्यधिक बलप्रयोगस्य आशंकायाः प्रकरणे देहली उच्च न्यायालयः केंद्र सर्वकारात् देहली आरक्षक विभागाच स्पष्टीकरणं आहूतवान् फिलीपींस देशस्य मनीला नगरे समायोजिते क्वाड मंचस्य वैदेशिक मंत्रिणाम उपवेशने मंत्रिभिः मुक्त उन्मुक्त समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्राय स्वकीया प्रतिबद्धता पुनरावर्तिता असम राज्ये भीषण जलप्लावेन स्थितिः अद्यापि अत्यंतं गभीरा वर्तते यत्र जलौघे मृतकानां आहत्य संख्या संवर्ध्य 31 संप्राप्ता अपि च चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायाम् अद्यापराह्णे वारद्वयस्य ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः स्वस्यैव देशस्य उन्नति हुड्डां पराजित्य द्वितीय चक्रं प्राविशत्।

0: केन्द्राणि समुद्घाटितानि। यैः द्वादशसहस्राधिकेभ्यः जनेभ्यः आश्रयः, एकलक्ष्याधिकेभ्यः जलाप्लावितेभ्यः च साहाय्यं प्रदीयते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। दिल्ल्यां प्रचलद्भिः विरोध प्रदर्शनैः व्यथितः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः न्यगादीत् यत् केन्द्रीय सर्वकारः छात्राणां भावोद्गारान् आशंकाः च प्रति अतीव संवेदनशीलो वर्तते। सर्वकारः छात्रैः उत्थापितस्य प्रतिप्रश्नस्य श्रवणाय समाधानाय च पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्री सिंहः तीक्ष्णम् आक्षेपं व्यदधत्त यत् कतिपयजनाः स्वकीयान् संकुचित राजनैतिक स्वार्थान् साधयितुम् ऊर्जस्विनीं छात्रशक्तिं राजनैतिक कन्दुकत्वेन प्रयोक्तुं कुत्सितं प्रयासं कुर्वन्ति।
1: ये संसद का सत्र इस समय चल रहा है, सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है।
0: संसदी विपक्षेण कृताम् असंसदीय बाधामधिकृत्य रक्षामन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारः सर्वस्मिन्नपि ज्वलन्तविषये सारगर्भयुतां विचारचर्चां कर्तुं सदैव सन्नद्धो वर्तते। किन्तु विपक्षः समस्यानां समाधानं संसद्भवनस्य अपेक्षया मार्गेषु कर्तुम् अनुचितं प्रयासं करोति। अद्य लोकसभायां रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् आधुनिक प्रौद्योगिक्या आधारभूत संरचनया समुन्नत रक्षणकार्यैः च रेलसुरक्षा अतीव सुदृढा विहिता। लोकसभायां लिखित उत्तराधारेण श्रीवैष्णवेन प्रतिपादितं यत् सुरक्षाकार्याणां व्ययः 13,000+ वर्षे 13,000+ कोटिरूप्यकेभ्यः संवर्ध्य 1,20,000+ सञ्जातम्। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यापराह्णे वारद्वयस्य ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः स्वस्यैव देशस्य उन्नति हुड्डां 1:14.9, 1:21.10 इत्यंकांतरालैः पराजित्य महिला एकलवर्गस्य राउंड ऑफ 32 स्पर्धां विजित्य द्वितीय चक्रं प्राविशत् इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी कटक শুনতু আকাশবাণী ব্রহ্মপুর কেন্দ্র প্রস্তুত উজ্জ্বল আমদেশ প্রযোজনা সিদ্ধার্থ শঙ্কর মহারণা উপস্থাপনা সুকান্তি মহান্তি।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना माध्यम रे प्राय 60 कोटि लोक 5 लाख टंका पर्यंत मागणा उपचार पई होईछंती योग्य हिताधिकारी ए पर्यंत 12 कोटि रो ऊर्ध मागणा चिकित्सा करा जाईछि जेंथरे गरीब परिवारक चिकित्सा खर्च प्राय 2 लाख कोटि टंका संचय होई परिछि आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करी आयुष्मान कार्ड बनंतु अधिक सूचना पई 14555 नंबर को कॉल करंतु।

राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवी के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए न तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और न ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क) भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार 30वें दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना

पटना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने एक मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है। यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले 4 दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो

0: उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है, जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है, बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए सदन की निर्धारित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च सदन में 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही नीट प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर गतिरोध लगातार बना हुआ है।
1: आम केन्द्ररु पाला परिवेषण करुछन्ति बैकुंठ दास एवं साथी कलाकार।
2: मासक मास विद्युत बिल बढ़िबारे लागिछि, भारी असुविधा हेलाणी।
3: हां जेहले करिबा कोन, घरे नाना काम रहुछे, गरम भी संभाली होउनी।
4: मामा कोन हैला इते चिंता रे काहे कि अछो?
2: किछि नै लो मा, ए करंट बिल कथा भाबुथिली। आउ कह मो मामार पढ़ापढ़ी केमती चली छी?
4: भले चली छी बापा, आज स्कूल रे आम सर पीएम सूर्य घर योजना विषय रे कहुथिले, घरे सोलर पैनल लगाइले प्रति मास रे 300 यूनिट पर्यंत विद्युत बिल बचाई परिबा, आ सरकार एथिरे 3 किलो वाट पे 1,38,000 टंका रे सब्सिडी मध्ये दउचंती।
3: हां सते लखे रु अधिक सब्सिडी।
4: हां मामा संचय भी सुविधा भी।
2: आ सुनो 1800345678 किंबा 1912 रे कॉल करी ए योजना विषय रे अधिक बुझिबा।
5: ओडिशा सरकारक समवाय विभाग तरफ राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानक सूचित करा जाउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मक्का कपा अदा मांडिया चीना बादाम हळदी ओ हरड़ चासर बीमा पंजीकरण कराई नियंतु। भाग चासी ऋणी ओ अनऋणी चासी समस्त निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुधा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैंप्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे, प्लॉट पिछा केवल 1 टंका देवाक पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता, आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे। आज्ञा हां, मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसांतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु। आज ही 1800345671 किबा 1912 रे जोगाजोग करंतु।

0: चाह चाही बे गुरुदेव
1: गुरुदेव
0: मु तो बाप पे राजी अछि
1: राजी अछि
0: और उसी भरद्वाज कहले मां यदि दक्षिणा देबा को तोर इच्छा सत्य भी यदि कलु तबे सोणु और उसी कोन कहले
2: कोन।

0: ଦର୍ଶନ କରି
1: ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପାଲା, ପରିବେଷଣ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦାସ ଏବଂ ସାଥୀ କଳାକାର। ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦୁଝର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ି ରାତି 8:45 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀର ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
3: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
2: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल

0: की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
3: आप जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से और जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह की मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: नामची जिले के NHPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NHPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवार्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
5: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I am Elsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NET paper leak issue in Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents declined sharply with improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. The US blames Iran for the naval blockade against Saudi Arabia and the Red Sea by Yemen's Houthi group. And in China Open badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries, as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youths. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. Mr. Modi also highlighted that the widespread adoption of initiatives such as the PM Kusum scheme by farmers can bring transformative changes to the agriculture sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NET paper leak issue in Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
7: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rules should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
6: Mr. Rijiju's remarks came as both houses of Parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, the Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions, despite the government's willingness to discuss the issue.
7: From the very beginning, the Congress party also said that it wanted a discussion and the chair has expressed the same. However, instead of allowing the discussion to take place, the Congress is once again looking for excuses by imposing conditions. When the government itself has clearly stated that it is ready for a discussion, there is no need to attach additional conditions. By doing so, the Congress appears to be creating another pretext to prevent the discussion from taking place. This should not be done.
6: leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, said the discussion could not proceed without

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मुकेश की आवाज़ में। शब्द रचना है साजन दहलवी की, संगीत रचना श्याम जी घनश्याम जी की और फिल्म का नाम है ठोकर।

आइए सुनते हैं अगला गीत मुकेश की आवाज में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है संगम।

आइए सुना जाए अगला और अंतिम गीत, जिसे लिखा है कमर जलाल आबादी ने। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम है छलिया, आवाज़ आप जानते हैं मुकेश की।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र माथुर।

0: रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बड़ी

0: क्या बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
1: मैंने

0: सपने।
1: मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और माँ थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे, और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली फिल्म

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

सन 1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ

0: है।
1: सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहाँ हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

0: और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।
1: चंद

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की। लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नैन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

सन 1962 में चलते हैं, जब मनोज कुमार मुकेश की आवाज के जरिए पर्दे पर होंठ हिलाते हुए कह रहे हैं।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

0: जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना ना गुनगुनाए।
1: डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिनती है मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह।
0: खूबसूरत मौसम में मॉडर्न गर्ल फिल्म का ये गाना भी तो आपको याद आता है ना।
1: ये

यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज हैं, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

धन्य धन्य पुरुषोत्तम धन्य श्री मंदिर धन्य तुम्हें चंडाल देवता कि जादुकरी आकर्षण भरी रही जग आखिरे प्रभु जगतपति जगन्नाथ तुम श्रीचरण तले अभागिनीर एति मागुणी मनेरी माखी सखी पद्मावतीर मनस्कामना पूर्ण करिथ्य प्रभु पूर्ण करिथ्य।

Thank you.

0: सूत्रों देवो महाजन को गुआरी सुनी बाबू अवधान है वो मणिमा है मोबाबू
1: हे चाहतु प्रभु जगन्नाथ को लगी बढ़ी थी से फूलमाल खसी पड़ला आई छड़ामाड़ी
0: संगे संगे घेनि मणिमा जय जगन्नाथ
2: अपूर्व जगन्नाथ मंगल आरती आज अपूर्व
0: घृणा करतु मणिमा छामुंको कंठरे ये माला आज अपूर्व शोभा धारण करुचे छामु धन्य धन्य से मालाकार जय जगन्नाथ हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि बोलो
1: अपूर्व सुगंध है माला प्रभु शरण पंजर महाबाहु भक्तर मनोरथ पूर्ण कर प्रभु भक्तर मनोरथ पूर्ण कर जय जगन्नाथ
3: समुचार श्री श्री श्री गजपति महाराजा पुरुषोत्तम।

0: चिलिका छाड़ीबा आज के पांच दिन हला ना पद्म।
1: हाँ मणिमा, बाटरे पाट पत्तनपुर तापर अनंतगिरी बाट दे ए रामगिरी पर्वत तले आमर शिविर जंगल टी खूब हिंस जंतु भरा जना पड़ुछ।
0: भय करिवर कोनोस कारण नहीं पद्म, एठारु शिविर उठाई आमे जिबा राजमहेंद्री आ तापर कृष्णा कृष्णार से अबुला स्मृति मो आखि आगे जीवंत हो भासी उठे।
1: केन स्मृति महाराज?
0: मो स्वर्गत पिता कपिलेन्द्र देवंकर एठारे आह्वान होता मो मथरा आशीर्वाद ठाड़ी पिता मत गजपति सिंहासन अर्पण करते पितृवियोग दुख मध्य भातृ बिवाद मत एक बेले बिव्रत कर पकईला।
1: करुणामय जगन्नाथ जहां भरोसा चीर सहाय
0: तुम्हें ठीक कह पद्म, श्रीचरण भिन्न मोर अन्न आश्रय ना आई ना
1: कण माणिकी गौणुणी दही खाई रत्नमुदी बंधा पक भक्त आगे आगे भगवान बाट कढ़ जीवार संभव हाँ।
0: जंगल र पशु मनीष को आक्रमण करिवार उपयुक्त शास्ति पाई
1: उन्मुक्त कृपाण हिंस्र बाघर गंडी और मुंड को एका चोट अलग कर दी।
2: वाह वाह चमत्कार चमत्कार वीरत्व उन्मुक्त कृपाण हस्तरे हिंस साधुल को एकाकी आक्रमण कर दुईगढ़ करदेल धन्य तुम लक्ष्य तुम साहस को प्रशंसा नक मुझार नहीं वीर ए नियमर मुक्तामल तुम वीरत्वर योग्य पुरस्कार।
0: क्षमा करिवे वीरत्व साहस हूँ क्षत्रिय जन्मगत अधिकार पुरस्कार लोभरे
2: नंदपुर युवराज तुम वीरत्व मुग्ध हो तुमको पुरस्कृत करने को इच्छा करथच तुम्हें
0: आपण परिचय लाभ ही मोर जथेष्ट
2: ना ना केवल तुम वीरत्व नुहे एकाधार तुम महत्व विनय एवं सौजन्य मत मुग्ध कराड़ से कथा यही निविड़ अरण्य मध्य
1: रामगिरी अतुल चित्र संपद क्या भला मुग्ध न कर युवराज
2: परिचय पाइले अधिक सुखी
0: जड़े क्षेत्रीय विदेशी एत कण जथेष्ट नुहे
2: बुझिली सरल मनरे परिचय दे सहज भाव में कथा कहवाटा सभ्य जगतर प्रथा नुहे परा ता छड़ा नंदपुर एक बणुआ देश तार अधिवासी जेते बले अशिक्षित अनुन्नत
1: ना ना से भली विचार करंतु नहीं युवराज सभ्य असभ्य ब्राह्मण चंडाल नीच भेदभाव और संकीर्णता प्रभु जगन्नाथ चलती प्रतिमा पाखे असंभव
2: ए जगन्नाथ चलती प्रतिमा मु तेबे कौन गजपति महाराजा पुरुषोत्तम देवंकर साक्षात लाभ कर धन्य हेची
1: तमर अनुमान सत्य युवराज
2: महानुभव सम्राट मोर अपराध मार्चना करंतु आ मोर आज की परम सौभाग्य मु ए संगे संगे आसुचे मणिमा अरे के अछरी सम्राट अंकर जश चित संवर्धना लागी
0: थाउ युवराज थाउ लौकिकता पूर्ण संवर्धना रे कोनो से आवश्यकता नाही आपण को साथी रे अनाहुत सस्नेह मिलन मो निमंते दुर्लभ ताछड़ा मु कांची पत्थर यात्री जिते बड़े
2: मु सुनी थी सम्राट कांची अभियान कथा ए अभियान रे नंदपुर क्षुद्र शक्ति कौन सी सेवारे लागी पारे निजको आमे भाग्यवान मन करंतु
0: आपण प्रकृत मित्र रो उपयुक्त कथा कहिचंती युवराज मनर अभिलाष प्रकाश करंतु
2: अनुमति प्रदान कले कांची अभियान रे मु छामुंकर अंगरक्षार भार ग्रहण करिवि
0: तुमर इच्छा मु पूरण कलि बंधु।

0: मुदिर आलम्ब कहीं ठाकुर मान पंडी विजय सर छेरा पोरा कले आते नीति
1: सब ठिकाणा अच्छी बड़ पंडाए मणिमा खाली चंदन आवर्ण सुवर्ण ग्रहण कले छेरा पोरा नीति बढ़
0: तो मणिमा निजे विजय
2: আজি পবিত্র শ্রীগুণ্ডিচারে যাত্রী ভিড়ে বড়দাণ্ড উছুড়ি পড়ুছি সরিষটায় পকাইবাকু বি স্থান নাই তিনি রথরে তিনি ঠাকুর মানে কেড়ে সুন্দর দেখা যাচ্ছন্তি প্রভু প্রভু এ নেত্র মোর পবিত্র হেলা প্রভু পবিত্র হেলা মায়া
3: মু এইটি আছি মহামন্ত্রী
2: সে ফুলমালটি
3: জেমাদেই ধরিছন্তি
2: এই ছেড়া পহরা করিবা লাগি মুদিরস্ত গজপতিঙ্ক হাতকু চন্দন আউ সুবর্ণ সমার্জনী বড়াই দেলি নন্দীঘোষ রথ আড়ুকু মণিমা অগ্রসর হেউছন্তি এই এই সে সুবর্ণ সুযোগ মা পদ্মাবতী আ আস আস মো সাথীরে আ মায়া গজপতি মহারাজাঙ্কর জয় হেউ
4: কিয়ে মা মন্ত্রী
2: হ্যাঁ মণিমা সাথিরে মোর কাঞ্চি রাজজেমা পদ্মাবতী আউ তাঙ্কর প্রিয় সখী মায়াবতী মধ্য আসিছন্তি
4: কিন্তু সেমানে এঠারে কাহিকি
2: মহারাজ অতীত কথা থরে স্মরণ করন্তু ছামু সেদিন কহিথিলে
4: স্মরণ রখিবে মহামন্ত্রী সিংহাসন রাজার প্রেমিকরণ গজপতি রানী হংসপুরে চণ্ডাল পত্নীর স্থান অসম্ভব কাঞ্চি রাজজেমা পদ্মাবতী নেই আপনার যথা ব্যবস্থা করে দিয়ন্তু আর এতে সাহায্য করিব মায়া
2: ছামু এ কথা কই নথিলে
4: হ্যাঁ কইতিলি মহামন্ত্রী আর মোর সে আদেশ এ পর্যন্ত পালিত হই নাই কাহিকি
2: আজি শুভ লগ্ন রে গজপতিঙ্কর সেই আদেশ পালন করিবাকু মা আসিছি মহারাজ উৎকলর ভাবি রাজরানী পদ্মাবতীকে কহ মায়াবতী সে মহারাজক গলারে পুষ্পমাল পিন্ধি তাঙ্কু পতি রূপে বরণ করুন
4: মহামন্ত্রী অতিশয় বার্ধক্য হেতু আপনকর মতিভ্রম ঘটি নাই তো
2: বার্ধক্যরে পাদ দেলিনি মণিমা এয়া সত্য কিন্তু মতিভ্রম ঘটি নাই এথিরে মু দৃঢ় নিশ্চিত হস্তরে সুবর্ণ সমার্জনী ধরি ছামুকোণ আজি জনে চণ্ডাল কর্ম করুনাহান্তি
4: মহামন্ত্রী
2: এতে নিকটরে জনে শ্রেষ্ঠ চণ্ডাল থাউ থাউ এ বৃদ্ধ মন্ত্রী অন্য চণ্ডালটি খোঁজিবাকু কেউঁঠিকি যিব মণিমা চকাডোলাঙ্কু সাক্ষী রখি ছামু নিজে কুহন্তু উপস্থিত সামন্ত রাজামানে কুহন্তু সমবেত জনতা কহু বীর শ্রী গজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট উৎকল বর্গাদীশ্বর শ্রী শ্রী শ্রী পুরুষোত্তম দেব বর্তমান ছত্রপতি সম্রাট না চণ্ডাল
5: कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
6: सरकार नी पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
5: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन 29